0: வந்தே மாதரம் கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார் பல். विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाज़ों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर होर्मुज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों

दिनों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेतु विज्ञान विभागः। नागोया एशियाई क्रीडासु भारतस्य पदकानां संख्या 23 सम्प्राप्ता। लक्ष्यभेद स्पर्धायां कमलजीत सुरुचि युग्मेन स्वर्णं, गुलवीर सिंहेन च रजत पदकं प्रासाधि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभृतयः सर्वेभ्यः विजेत्री क्रीडकेभ्यः वर्धापन संदेशं अयच्छन् इति वार्ताः।

0: विपत्ति में, विरोध में अडिग रहो, अटल रहो। विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। तपाज है जो, जला है जो, चमक उसी में आई है। समस्त ताप तम में भी पढ़े चलो, सफल रहो। बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो। घटा गिरी अटूट हो, मगर सदा सबल रहो। कमी कहाँ पे रह गई, विचार इस पे तुम करो। ये स्वप्न भी न देखना कि तुम कभी विफल रहो। बड़ा विचित्र शत्रु है मनुष्य का निराश मन। उदासियों को त्याग कर सबल रहो, प्रबल रहो। उदासियों को त्याग कर सबल रहो, प्रबल रहो। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी इन ओजस्वी पंक्तियों में मानस के मन के भीतर जीवंतता की अलख जगाने के लिए कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं या लोग आपका कितना भी विरोध क्यों ना करें, इंसान को अपने स्थान पर अडिग और अटल रहना चाहिए। बुरा और कठिन समय आने पर भी उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और शक्तिशाली तथा साहसी बने रहना चाहिए। जिस तरह सोना तपकर ही चमकता है, ठीक उसी प्रकार ही इंसान भी कठिनाइयों का सामना करके ही सफलता और असली चमक हासिल करता है। चारों तरफ दुख का अंधकार होने पर भी इंसान को रुकना नहीं चाहिए, बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफलता के मार्ग पर, बंधुता के मार्ग पर, मनुष्यता के मार्ग पर। दिनकर आगे कहते हैं कि यदि कर्तव्य पथ पर कभी असफलता भी मिले तो मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हार गए, बल्कि ये विचार करना चाहिए कि आखिर हमारे प्रयास में क्या कमी रह गई थी और उस कमी को दूर कर दोबारा उसी पथ पर एक नई सोच और ऊर्जा के साथ यात्रा शुरू करनी चाहिए। तो श्रोताओं, इन्हीं सद्विचारों के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस ओजपूर्ण प्रभात में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल, और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: आपको भी मेरा नमस्कार मुकेश। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 MHz एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। यस, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू टिल 8 AM। सो स्टे विद अस एंड ग्रैब ऑल द इंफॉर्मेशन। टुडे इज 26th of September 2026 एंड हियर कम्स द सैटरडे। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट हैव बीन वेटिंग for the weekend because Saturday and Sundays are the best days of every working person. जी. So let's begin our program with the news headlines.
0: बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से संवाद किया है। इस संवाद से जुड़ी और जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी पायल शर्मा।
2: जी धन्यवाद मुकेश। सेवा यात्रियों के साथ संवाद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हो गया है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे में हुए उल्लेखनीय सुधार पर उन्होंने कहा कि देश भर में महिलाएं भी अधिक आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर भी बल दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बताया कि वडनगर ने उन्हें वे मूल दिए जिन्होंने उनके जीवन को आकार दिया, जबकि काशी ने उन मूल्यों में सेवा के अनगिनत रंग भर दिए। संवाद के दौरान सेवा यात्रियों ने भी प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। तो ये थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सेवा संकल्प यात्रा के दौरान कही गई कुछ महत्वपूर्ण बातें।
0: धन्यवाद पायल इस तमाम जानकारी के लिए। इसके अलावा श्रोताओं, रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने को भी मंजूरी दी है। सप्ताह में 3 बार चलने वाली ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी प्रदान की है।
1: External Affairs Minister S. Jaishankar will address the high-level session of 81st United Nations General Assembly UNGA

0: in New York today. The 81st session of the UN General Assembly is being held under the theme Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all. The General Assembly brings together presidents, prime ministers, and senior representatives from all 193 UN member states who will outline their priorities and positions on major international issues. According to the United Nations, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and also promoting collective action for peace, dignity, and equality. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea, saying that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jaishankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the United Nations General Assembly in New York. The External Affairs Minister announced a new initiative by India and Liberia together to draw greater attention to the safety and security of ships and also seafarers.
1: और तन्वी अब अपने श्रोताओं को जानकारी देते हैं कुछ खेल से जुड़ी खबरों की. तो फिडे शतरंज ओलंपियाड में विश्व चैंपियन डी गुकेश के निर्णायक जीत के साथ भारत ने पुरुष ओपन वर्ग के नौवें दौर में जर्मनी को हरा दिया है. इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और खिताब की दौड़ में मजबूत स्थिति में है. जर्मनी के खिलाफ आर प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी और निहाल सरीन के बराबरी पर छूटे, लेकिन गुकेश ने भारत के लिए जीत दर्ज की. महिला वर्ग में बी सविता श्री की लगातार सात जीत का सिलसिला रुक गया है, लेकिन उज्बेकिस्तान की करीमोवा गुलदाना के खिलाफ मैच बराबर होने के कारण वे अब भी अजेय बनी हुई हैं. कोनेरू हम्पी की अगर बात करें तो उन्होंने उज्बेकिस्तान की खिलाड़ी के खिलाफ ड्रॉ खेला, जबकि विश्व कप विजेता दिव्या देशमुख और विंतिका अग्रवाल ने अपने मुकाबले जीतकर भारत को 3-1 से जीत दिलाई. भारत 9 दौर में 15 अंकों के साथ कजाकिस्तान और मंगोलिया के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है.
0: And in Asian Games 2026, India's men's and women's kabaddi teams will play their final matches today in Aichi, Nagoya, Japan, with both sides aiming to defend the gold medals they won at the 2022 Asian Games in Hangzhou. Both Indian men and women teams will face Islamic Republic of Iran in their respective finals today. The women's final will start at 9:30 a.m. India time and the men's final at 2:30 p.m. Indian time. Two-time Olympic medalist PV Sindhu begins her singles campaign and will carry India's hopes in badminton after Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty's shock exit from the men's doubles. Lakshya Sen will also be in men's singles action but will have a former world champion to contend with in Singapore's Low Ki Yo. In athletics, Gulveer Singh returns to the track a day after his 10,000-meter silver, aiming to reach another final through the 1500-meter heats. Parul Chaudhary lines up in the 1500-meter final alongside compatriot Pooja.
1: श्रोताओं, अब कार्यक्रम में रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का. तो इस कड़ी में शुरुआत दिल्ली से जुड़े समाचारों की. दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने एक विशेष बैठक में कंसेशनर यानी किसी निजी कंपनी के जरिए संविदा पर रखे हुए बस ड्राइवरों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की. ये बैठक बस ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों के साथ की गई. इस बैठक में ड्राइवरों द्वारा उठाई गई मांगों के समाधान के साथ राजधानी में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के सुचारू संचालन पर विस्तार से चर्चा हुई. इसके अलावा दिल्ली नगर निगम एनसीडी द्वारा खतरनाक भवनों, अनाधिकृत निर्माण तथा मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली और भवन उपनियमों के उल्लंघन के विरुद्ध शहरव्यापी प्रवर्तन अभियान भी जारी है. एमसीडी ने दोहराया कि निगम के क्षेत्राधिकार में अनाधिकृत निर्माण और भवन मानदंडों का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा. और श्रोताओं, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को दक्षिण अफ्रीका के कैपटाउन में आयोजित वर्ल्ड सेफ्टी 2026 सम्मेलन में रोड सेफ्टी कैंपेन हेलमेट पहनने के परिणाम के लिए आधिकारिक रूप से ऑनरेबल मेसन्स से सम्मानित किया गया है. ये सम्मान सेफ्टी

0: सम्मेलन 2026 अल्ट्रा शॉर्ट वीडियो श्रेणी में प्रदान किया गया है। और चेन्नई से आपके पास क्या है तन्वी?
1: ओके, द तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन TNPDCL विल एंगेज मैन पावर ऑफ अ थर्ड पार्टी थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स टू रीड मीटर्स एंड ओवरकम द इरेटिक असेसमेंट ऑफ पावर कंजम्पशन व्हिच लीड्स टू रॉन्ग एंड इन्फ्लेटेड पावर बिल्स एंड टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ असेसर्स। आउटसोर्सिंग ऑफ द टास्क विल कम इनटू इफेक्ट इन अक्टूबर। देयर आर अराउंड 3.5 करोड़ लो टेंशन सर्विसेज इन Tamil Nadu, including 2.5 crore domestic consumers. The sanctioned strength of assessors is 7,565 to record power consumptions once in 2 months and generate invoices. However, there are only 3,063 assessors, while 4,502 posts, nearly 60, remain vacant. While retired TNEB personnel were so far engaged to assess electricity consumptions at doorsteps, TNPDCL has decided to outsource it to meet the shortage and to ensure prompt, accurate and timely meter readings. TNPDCL executive engineers can float limited tenders for a period of 6 months for the additional required manpower, and the same will be vetted by the superintendent engineers concerned.
0: और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मथाड़ी कानून का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नवी मुंबई में 50 साल पुराने कृषि उपज बाजार समिति बाजार के पुनर्विकास की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मथाड़ी नेताओं से परामर्श किया जाएगा। इसके अलावा श्रोताओं, ठाणे जिला परिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सेवाओं की स्थिरता का मूल्यांकन, सत्यापन और संवर्धन करने के लिए स्वच्छ सेवा आकलन का शुभारंभ किया है। स्वच्छ सेवा आकलन ग्राम पंचायत स्तर पर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाने के लिए तैयार किया गया एक वार्षिक डिजिटल स्व मूल्यांकन प्लेटफॉर्म है। और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप बी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले में कुल गिरफ्तारी 11 लोगों तक पहुंच गई है।
1: Moving towards Bangalore, Karnataka Minister for Health and Family Welfare, U.T. Khader, has informed that the government holds a firm resolve to bring maternal deaths down to zero across the state. He was speaking at the state-level workshop on Surakshit Matritva Ashwasan or Suman Roadmap 2030 in Bangalore, organized by his department. The minister, speaking after inaugurating the workshop, said that several focused and effective measures will be initiated, reaching out to the remotest villages to achieve the goal of zero maternity deaths. The minister informed that 60% of deliveries of babies in Karnataka take place in government hospitals. He specifically mentioned that the Wenlock District Hospital in Mangaluru and the Mani Vilas Hospital in Bangalore handle baby births more than those put together in the private hospitals. The causes of maternal deaths vary district-wise, and hence specific local causes of the maternal mortality will be identified by the district-level team of officers and take corrective measures. A dedicated state-level unit will be established for this purpose, with a designated officer to coordinate and monitor the interventions and outreach campaigns. The early identification and continuous tracking of high-risk pregnancies will also be strengthened. The birth waiting homes will be established at a district and taluka levels, where the high-risk pregnant women will be identified well in advance and, depending on their clinical needs, admitted to the birth waiting home about a week before the expected date of delivery for intensive care. The awareness campaigns at the Gram Panchayat level will promote maternal health and preventive measures for maternal deaths. And moving towards Hyderabad, the annual Ganesh Idol immersion process across Hyderabad concluded peacefully on a grand scale, highlighted by the successful immersion of the iconic 69-foot Sri Panchmukh Sankathar Mahaganpati at Grain No. 4 along NTR Mark in Hussain Sagar yesterday. Relief and joy swept through the crowd as police officers, civic authorities and committee members celebrated the events' safe execution along the banks. Telangana State Minister Poonam Prabhakar, following an aerial inspection of

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त है मौसम की बात करने का। तो इधर राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उधर मुंबई में भी आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान है। शहर में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अगर बात की जाए कोलकाता की तो वहां आज बारिश और आंधी तूफान का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। और अगर हम बात करें चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के मौसम की तो वहां भी आज कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलेंगी। अब पलटते हैं श्रोताओं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। लेकिन उससे पहले हम अपने श्रोताओं को आपको बता दें, यानी कि आज विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है जो प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के बीच जटिल संबंधों को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरणीय स्वास्थ्य खतरों के बारे में जागरूक करना और सुरक्षित तथा स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देना है। ये दिवस शुरू कैसे हुआ, तो इसका उत्तर है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण महासंघ यानी IFEH ने 26 सितंबर 2011 को इंडोनेशिया में आयोजित एक शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की थी। और इसके साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस भी है। इस दिवस की स्थापना परमाणु हथियारों से उत्पन्न खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यानी हम कह सकते हैं कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य परमाणु हथियारों से मानवता को होने वाले खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देना है।
1: And Mukesh, just the way you mentioned that Chennai, Bangalore and Hyderabad all have somewhat cloudy skies. So let me just read it out for all our listeners. Chennai is likely to have partly generally cloudy sky with light rain. The temperatures are expected to range between the minimum of 28 degrees and maximum of 36 degrees Celsius. Bangalore is forecast to experience generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 20 degrees while the maximum may reach 29 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with moderate rain. Temperatures are expected to range from 24 degrees to 30 degrees Celsius. And as you were mentioning about the history, what exactly has happened on 26th of September. So let's talk about the year 1580 when Francis Drake completed his circumnavigation of the world, sailing into Plymouth, England aboard the Golden Hind.
0: Aur agar baat kare baras 1872 ke bare mein to New York City mein isi tarikh ko आज ही के दिन पहला मंदिर बनाया गया था।
1: And if we talk about 1932, Gandhi ji broke fast on Indian government's acceptance of his demand regarding Harijans.
0: 1960 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दो उम्मीदवारों जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच बहस का पहली बार टेलीविजन पर प्रसारण भी आज ही की तारीख को हुआ था।
1: In 1985, P.T. Usha had set record for 100-meter women in 11.39 seconds at Jakarta.
0: 1984 की अगर हम बात करें तन्वी, तो यूनाइटेड किंगडम हांगकांग को चीन के हवाले करने के लिए सहमत भी आज ही की तारीख को हुआ था।
1: And if we talk about 1991, Ordinance to Amend Monopolistic and Restrictive Trade Practices Act, MRTP,

0: and the Companies Act totally removed pre-entry restrictions on new industrial houses and expansion of the existing ones.
1: Iske kuch saalon baad yani ki 2009 mein Pooja Shri Venkatesh ne Rashmi Chakravarti ko harakar ITF Mahila Tennis Tournament ka khitab bhi aaj hi ke din apne naam kiya tha. और इसके दो बरस बाद यानी कि 2011 में दिल्ली मेट्रो दुनिया का पहला ऐसा रेलवे नेटवर्क बना जिसे संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के लिए कार्बन क्रेडिट दिया था. और अब समय है कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों और जन्मदिन के बारे में बात करने का. तो इस कड़ी में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर के बारे में. आज इनकी पुण्यतिथि है. ये भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक रहे. किर्लोस्कर उद्योग समूह के वे संस्थापक थे. वे विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट मुंबई में अध्यापक के रूप में भी उन्होंने काम किया. लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर जी ने एक साइकिल की दुकान से अपने व्यवसायी जीवन की शुरुआत की और जीवन पर्यंत इतनी विशेष सफलताएं उन्होंने हासिल की.
0: And the person that I am going to talk about is Uday Shankar. Today is his death anniversary, an Indian dancer and choreographer best known for creating a fusion style of dance, adapting European theatrical techniques to Indian classical dance, imbued with elements of Indian classical, folk and tribal dance, which he later popularized in India, Europe and the United States back in 1920s and 1930s. He was a pioneer of modern dance in India. In 1962, he was awarded by Sangeet Natak Academy, India's National Academy for Music, Dance and Drama, with its highest award, the Sangeet Natak Academy Fellowship for Lifetime Achievement. And in 1971, the Government of India awarded him its second highest civilian award, the Padma Vibhushan. Let's hear an interview of his recorded version for Kolkata Doordarshan in English.
2: Oh, that was in, I think, 1920, yeah, when I was a student in London. And I used to dance for the students and all that. Then Lady Burabji Tata, yeah, she got to know about me. And we had a sort of India Day in Wembley exhibition. I have to dance a dance. I did not know what I was going to dance on. But something came in my hand, I'll do Dance of Shiva. But it was great success.
0: In this interview, he explained how he ended up from studying miniature paintings to dance. He started his own revolution first in London, then in Paris, back to India and then to the entire world. His ensemble included his brothers, cousins and few Europeans who saw him as something exotic. He had to train his troupe not just dancing but how they need to behave. He asked them not to get into political discussions at all back in 1920s and 1930s.
1: श्रोताओं, भी आपने सुना उदय शंकर का ये एक साक्षात्कार. तो अगर हम बात करें उनकी, तो उन्होंने तांडव नृत्य, शिव पार्वती, लंका दहन, रिदम ऑफ लाइफ, श्रम और यंत्र, रामलीला और भगवान बुद्ध नाम से नवीन नृत्यों की भी रचना की थी. ये उनके बारे में एक विशेष जानकारी है. और इसके अलावा इनमें वेशभूषा, संगीत, यंत्र, ताल और लय आदि चीज़ें उन्हीं के द्वारा रचित की गई थी. अब हम बात करते हैं टीवी कुन्हा के बारे में. जी हाँ, आज उनकी भी पुण्यतिथि है. वे गोवा के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे. ये व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर करके गोवा को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. डॉक्टर टीबी कुन्हा जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपार कष्ट सहकर गोवा को वर्ष 1961 में स्वतंत्रता दिलाई. 1953 में भारत वापस आने के बाद टीबी कुन्हा ने मुंबई में गोवा एक्शन कमेटी का भी गठन किया था.
0: And we are talking about T.S. Eliot today. Today is his birth anniversary, a poet, essayist and playwright. He was a leading figure of modernist poetry in the English language, where he altered the art through his use of pessimistic language, writing style and verse structure. Awarded the 1948 Nobel Prize in Literature, he is considered one of the greatest poets of the English language. He is also noted for his critical essays, which often he re-evaluated long-held cultural beliefs. His writings include The Love Song of J. Alfred Prufrock, The Wasteland, The Hollow Men, Ash Wednesday, Four Quartets, Murder in the Cathedral, The Cocktail Party and many, many more.
1: आज ही के दिन पुण्यतिथि है हिंदी फिल्म जगत के महान पार्श्व गायक और संगीतकार हेमंत कुमार मुखोपाध्याय की. वे हेमंत दा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, जिनके

गीत आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बांग्ला और हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन भी किया। अगर हम बात करें तन्वी उनकी मुख्य फिल्मों के बारे में जिन्होंने उनमें संगीत का निर्देशन किया, तो उनके नाम हैं अनारकली, नागिन, प्यासा, गंगा जमुना, फरार, बात एक रात की, कोहरा, झनक झनक पायल बाजे, 20 साल बाद, साहब बीवी और गुलाम आदि।

श्रोताओं, देवानंद पर फिल्माया गया ये गीत उनकी जिंदगी को अच्छी तरह से परिभाषित करने के लिए काफी है। देवानंद का नाम हिंदी सिने जगत में स्टाइल गुरु बनकर जगमगाता है। सदाबहार अभिनेता देवानंद को लोग एवरग्रीन देव साहब कहकर भी पुकारते थे। देवानंद पर फिल्माए गए ये कुछ और गाने आपके समक्ष अब पेश हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
2: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वही सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
3: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
2: ये 4 श्रम संहिताएं भारत के श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 4 धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
4: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट

0: जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
4: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
5: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो। ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई है। पहली, जल संरक्षण से

0: जन भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
2: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो कीन यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी, गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, होर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड, एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल, सौर ऊर्जा से चलेगा AI कंप्यूटिंग सिस्टम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: बुकिंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है, जबकि प्रति सप्ताह 48 घंटा की सीमा में ओवरटाइम को दोगुना करने का प्रावधान भी है, जिसमें प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के अनुसार बेहतर मैन पावर प्लानिंग संभव हो सकती है।
1: दीज फोर लेबर कोड्स एम टू मॉडर्नाइज इंडियाज लेबर इकोसिस्टम, ब्रिंगिंग बोथ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स अंडर अ यूनिफाइड सेट ऑफ रूल्स दैट सिंप्लीफाई कंप्लायंस, एंश्योर सेफ्टी एंड इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्कफोर्स मैनेजमेंट। फॉर वर्कर्स दिस एंश्योर्स रोबस्ट सोशल सिक्योरिटी, सेफ वर्क प्लेसेस एंड ब्रॉडर एक्सेस टू बेनिफिट्स। फॉर एंटरप्राइजेज इट क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट ऑफ सिंप्लीफाइड कंप्लायंस, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस एंड अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी न्यूज, चंडीगढ़।
2: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has raised concerns

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: அடுத்த அறிவிப்பு தொடரும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார் பல். विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। इस सत्र का विषय विश्वास बहाल करना, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने लाएंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वें सत्र में वैश्विक सहयोग को पुनर्जीवित करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने तथा शांति, गरिमा और समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में

सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना है। उधर उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अमेरिका के 22 महान्यायवादियों के एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर $1,00,000 से अधिक का शुल्क लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। ये चुनौती भारतीय पेशेवरों और उन अमेरिकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च कुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए H-1B कार्यक्रम पर बहुत अधिक निर्भर हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंक से पराजित किया है। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा। और जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक अपने नाम किया है। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह कीन यू से होगा। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर काबिज है। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। ईरान ने अमेरिका की शर्तें मानने पर 7 दिन में हुर्मुज जलडमरू मध्य फिर खोलने का प्रस्ताव रखा। जापान एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। इस सत्र का विषय विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन सभी के लिए संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सत्र में वैश्विक सहयोग बढ़ाने, सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने, शांति, सुरक्षा और समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित

0: किया जाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया टालने के समान होगी। डॉ. जयशंकर ने कहा कि सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर अलगाव और सुरक्षा बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर मंत्री स्तरीय सत्र में ये बात कही। विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की गई। सत्र के दौरान डॉ. जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष में संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। इस समूह में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर भारत खाड़ी सहयोग परिषद की त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में वर्ष 2024 से 2028 के लिए भारत जीसीसी संयुक्त कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें साझेदारी और प्रगाढ़ करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत जीसीसी मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारत व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, नई प्रौद्योगिकियों, संस्कृति और जन आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में जीसीसी के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए तत्पर है। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय को दिए जा रहे समर्थन के लिए जीसीसी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने समुद्री परिवहन की स्वतंत्रता तथा नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले एक चिंता का विषय है। डॉ. जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत एमवी केप डाउ पर हमले का जिक्र कर रहे थे। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल व्यवस्था बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में श्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने नेपाल चीन सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जबकि बाढ़ का पानी भारत तक पहुंचा है। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
2: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जल भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुँचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन और जल संचय के कार्यान्वयन में जन भागीदारी का आह्वान किया ताकि टिकाऊ और दीर्घकालिक परिणाम हासिल किया जा सके। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और अपने परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता 7 दिन के भीतर फिर शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही ईरान ने अमेरिका को ईरान के बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकाबंदी और ईरानी तेल बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटाने के लिए कहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने

0: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाहर पत्रकारों को इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ रुकी हुई वार्ता फिर शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जैसे ही अमेरिका इस योजना को स्वीकार करेगा, 7 दिन की समय सीमा शुरू हो जाएगी। अमेरिका के 22 महान्यायवादियों के एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर $1,00,000 से अधिक का शुल्क लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। ये चुनौती भारतीय पेशेवरों और उन अमरीकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च कुशल श्रमिकों की भर्ती के लिए H-1B वीजा कार्यक्रम पर बहुत अधिक निर्भर हैं। एक रिपोर्ट।
1: महान्यायवादियों ने कहा है कि प्रस्तावित शुल्क से राज्य और स्थानीय संस्थानों के लिए कुशल विदेशी पेशेवरों की भर्ती करना और भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सेवाओं में पेशेवरों की कमी का हवाला दिया। प्रस्तावित शुल्क नियम को वापस लेने के लिए अमरीकी नागरिकता और अप्रवासन सेवा कार्यालय को एक औपचारिक टिप्पणी पत्र भेजने में वर्जीनिया के महान्यायवादी जे जोन्स ने गठबंधन का साथ दिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की 3 दिन की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विदेश नीति पर चर्चा में प्रगति हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई बड़ा नया समझौता नहीं हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति शी के साथ उनकी बैठक सार्थक रही। और अब खेल जगत के समाचारों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
2: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो कीन यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। ईरान ने अमेरिका की शर्तें मानने पर 7 दिन में होर्मुज जलडमरू मध्य फिर खोलने का प्रस्ताव रखा। जापान एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन दौड़ का रजत पदक जीत लिया है। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हरा दिया है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: சுகமான ராகங்கள் நிறைவு பெற்றது. மீண்டும் திரைப்பட பாடல்களை 11:10 திரைகானத்தில் கேட்டு ரசிக்கலாம். தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள்.
1: ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया।
2: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाओ पर हमले का उल्लेख कर रहे थे। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हुई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया

0: इस मामले का भी उल्लेख किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। अमेरिका के 22 महान्यायवादियों के एक गठबंधन ने ट्रंप प्रशासन द्वारा कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर $1,00,000 से अधिक का शुल्क लगाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। ये चुनौती भारतीय पेशेवरों और उन अमेरिकी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च कुशल पेशेवरों की भर्ती के लिए H-1B कार्यक्रम पर बहुत अधिक निर्भर हैं। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। वैतरणी नदी अक्वापदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं। इसके कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उधर उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वरचंद विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ईरान को 37-34 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। आज फाइनल में भारत ने मध्यांतर तक 22-16 की बढ़त बना ली थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। External Affairs Minister S. Jayashankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea and Black Sea, saying that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jayashankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the United Nations General Assembly in New York. External Affairs Minister S. Jayashankar met his counterparts from Iran and Russia, discussing a range of bilateral issues and cooperation in the BRICS grouping and the Gulf conflict. Mr. Jayashankar said that he met Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York and discussed bilateral issues as well as a number of the ongoing issues. Mr. Jayashankar also met Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi on the margins of the high-level UNGA session. They discussed the latest developments with regard to the Gulf conflict. India has welcomed the commencement of the Quad at Sea Ship Observer Mission, announced at the 11th Quad Foreign Ministers Meeting in New Delhi on the 26th of May this year. External Affairs Ministry said in a social media post that India Coast Guard ship Shaunak has sailed from Chennai with sea riders from all 4 Quad countries. It said the mission strengthens maritime cooperation and interoperability, reflecting the Quad's shared commitment to a free

0: இதுவரை மெல்லிசை பாடல்கள் கேட்டோம். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே விஷால் சர்மா. विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली परिवर्तन प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरियों को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81वें सत्र में वैश्विक सहयोग को फिर मजबूत करने, सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और शांति, गरिमा तथा समानता के लिए सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्प विकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से

0: सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में भी आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। पुरुष कबड्डी के फाइनल में आज भारत और ईरान आमने सामने होंगे। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। भारतीय टीम ने 1763 अंक बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया। चीन 1773 अंक लेकर खेलों के रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक के साथ जीता, और जबकि कजाकिस्तान को कांस्य पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. According to the UN, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has raised concerns over repeated attacks on commercial shipping and seafarers in the Gulf, Red Sea, and Black Sea. The minister said that the attacks were no longer exceptional occurrences. Dr. Jaishankar was addressing the inaugural meeting of the Group of Friends on Safety and Security of Shipping and Seafarers during the 81st session of the UN General Assembly in New York. Dr. Jaishankar announced a new initiative by India and Liberia together to draw greater attention to the safety and security of ships and seafarers. He said these incidents could no longer be viewed as isolated cases, as commercial ships and sailors have faced a series of attacks across key waterways. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has emphasized the need to harness the possibilities offered by artificial intelligence, anticipate its consequences and mitigate its risks. The minister made these remarks while co-chairing an event on AI in the context of international peace and security, with an emphasis on maritime security, alongside Foreign Minister of Greece, George Yerapetridis. During the event, Dr. Jaishankar reaffirmed that AI and maritime security remain important priorities for India. Foreign Secretary Vikram Misri has emphasized the urgency of UNSC reform to ensure greater voice and representation for developing countries. Delivering India's statement at the 50th annual meeting of foreign ministers on the Group of 77 at the 81st session of the UN General Assembly in New York, Mr. Misri called for collective efforts to enable the Global South to move from being rule takers to rule shapers. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Poorna Salila Srivastav, reaffirmed India's commitment to strengthening global pandemic preparedness and response at the UN high-level meeting in New York. Addressing the meeting, the Secretary outlined India's coordinated approach to pandemic prevention and response across government and society, which covers a wide range of potential health emergencies. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Keralam today. Mr. Shah will inaugurate women's empowerment initiatives in the cooperative sector at Kundara in the late afternoon. Later, he will attend the Amrita Kirti Puraskar ceremony.

0: Results: India are currently placed 12th in the medal standings, and its overall tally has reached 27 with 3 gold, 11 silver, and 13 bronze. Komudi Parekh, Akashwani News, Delhi.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls to leverage AI-created opportunities while addressing associated risks. Co-chairs event on AI in the context of international peace and security in New York. Mr. Jaishankar to address 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. Foreign Secretary Vikram Misri calls for urgent UNSC reform to give developing nations greater voice. Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Iran proposes deal to reopen Strait of Hormuz in 7 days if US meets its conditions. US rejects the proposal. Indian women's kabaddi team clinches gold, beating Iran at Asian Games, wins 2 silver medals in women's shooting and men's marathon. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमरीका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार

0: बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
1: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहाँ पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जनस्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट।
3: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केउंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
4: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार

0: बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
2: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
4: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
2: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर

तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुम कल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहत सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल

0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: நேரம் 2:30 நிமிடம். ஆகாஷ்வாணி 100.1 MHz FM கோல்ட் அலைவரிசை.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरोपेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने हिमालय क्षेत्र में आई विनाशकारी आकस्मिक बाढ़ के बाद जलवायु लचीलापन तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के संबोधन में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देश उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने नेपाल चीन सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति नेपाल की गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, इन्हें एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहां पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ अवैध निर्माण से जुड़े पुराने निर्देशों का पालन न होने पर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई कर रही थी। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। उधर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। बिहार में भी लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: academic level 14, 13A and 10 respectively. Eligible candidates may apply online within 30 days from publication of this advertisement in the Employment News. Hard copies of applications will be accepted up to 3 days after the last date for online submission. Details regarding qualifications, experience, fee and application procedure is available on the website, that is at www.cihts.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन में डिप्लोमा प्रशिक्षु के पद के लिए एसटी बैकलॉग रिक्तियां भरने हेतु विशेष भर्ती अभियान के तहत डिप्लोमा प्रशिक्षु का एक पद भरा जाना है और इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी देखिए वेबसाइट पर। वेबसाइट का पता है careers.ntpc.co.in/recruitment। मुख्यालय तटरक्षक क्षेत्र पश्चिम में विभिन्न सिविलियन पदों पर प्रत्यक्ष आधार पर भर्ती की जा रही है। पद नाम है स्टोर कीपर ग्रेड 2, इंजन ड्राइवर लश्कर, CMTD, MTS और MTS वॉचमैन। रिक्तियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। नियुक्ति के तहत भारत के किसी भी हिस्से में सेवा करने की बाध्यता है। विस्तृत जानकारी आप हासिल कर सकते हैं 19 से 25 सितंबर 2026 के रोजगार समाचार पत्र में, अथवा आप देख सकते हैं भारतीय तटरक्षक बल की वेबसाइट www.indiancoastguard.gov.in। आयुध फैक्ट्री अंबरनाथ में श्रम कल्याण अधिकारी का एक पद भरा जाना है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आयु न्यूनतम 27 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष हो सकती है। नियम और शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट ddpdoo.gov.in। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में सहायक अधिकारी सचिवीय के 10 पद रिक्त हैं। इनमें से 6 पद अनारक्षित हैं, एक पद एससी वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 1 तथा पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के लिए 1 पद आरक्षित है। शैक्षणिक योग्यता, नियम शर्तों, अन्य मापदंडों, तैनाती के स्थान आदि की विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की वेबसाइट पर। और इसके अतिरिक्त आप 19 से 25 सितंबर 2026 के रोजगार समाचार पत्र में भी आवश्यक जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट है www.rcfltd.com www.rcfltd.com। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कार्यालय में वरिष्ठ प्रशिक्षक पर्वतारोहण का एक पद रिक्त है। इस पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं सशस्त्र सीमा बल की वेबसाइट www.recruitment.ssb.gov.in अथवा SSB की मुख्य वेबसाइट www.ssb.gov.in पर भी आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी हो

0: और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुज्तबा। हेलो सायरा।
1: हेलो जया, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, एज ऑलवेज वी ब्रिंग यू एन अमलगमेशन ऑफ नॉट जस्ट न्यूज बट ऑल्सो सिंस द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा, सो वील डू द परिक्रमा ऑफ द कंट्री। यस, वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स एंड सी वॉट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव इन स्टोर for you all this over the next 30 minutes, but first let's start with the headlines. Jaya,
0: bilkul, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता की।
1: Mr. Jayshankar to address 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon.
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया।
1: Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh.
0: ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया।
1: एंड इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम क्लिंचेस गोल्ड, बीटिंग ईरान एट एशियन गेम्स, विंस 2 सिल्वर मेडल्स इन वुमेन्स शूटिंग एंड मेन्स मैराथन। And today, as always, we begin our show with our special segment, Dateline India. And today we're going to talk about 12 years of Make in India and, of course, International Day for Total Elimination of Nuclear Weapons.
0: बिल्कुल। और कभी किसी भारतीय कारखाने की मशीनों की आवाज को अगर ध्यान से सुनिए तो उसमें सिर्फ धातु की खनक नहीं, भारत के बदलते आत्मविश्वास की धड़कन भी सुनाई देती है। पिछले 12 वर्षों में मेक इन इंडिया ने निर्माण को एक विचार से आगे बढ़कर एक जन आकांक्षा का रूप दिया है। भारतीय हाथों ने उत्पाद बनाए, भारतीय प्रतिभा ने तकनीक गढ़ी और भारतीय सपनों ने नई ऊंचाइयों को छुआ।

0: Yes, today as the world turns its gaze towards it, it is not merely the numbers that stand behind this transformation, but the strength of millions of hardworking hands, the energy of our youth, and the confidence of an entire nation. This is the story of 12 years of Make in India.
1: और साल 2014 में 25 सितंबर को शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य बहुत बड़ा था, भारत को मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन और इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाना।
0: That's right, Jaya. But 12 years on, what does Make in India actually look like today? Well, is it simply about putting an Indian label on a product, or is it something much bigger taking shape? Well, let's look around.
1: बिल्कुल, तो अगर हम श्रोताओं से बात कर रहे हैं तो श्रोताओं अभी आपके हाथ में एक फ़ोन ज़रूर मौजूद होगा, तो अपने हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन को देखिए। ये एक शानदार कहानी कहता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2014-15 में 1,90,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13,11,000 करोड़ रुपए हो गया है, यानी 12 सालों में इसमें लगभग 7 गुना बढ़ोतरी हुई है।
0: Wow, that's quite a staggering statistic, Jaya. And mobile phone production alone has risen about 32 times, reaching around 6.3 lakh crore rupees. So from being a market for mobile phones, India has now become the world's second largest mobile phone manufacturer by volume.
1: और कहानी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक ही सीमित नहीं है। भारत ने 2024-25 में 3 करोड़ 10 लाख से अधिक गाड़ियां बनाई, और जहां तक बात दवाओं

0: की है। भारत दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। दवा उत्पादन के मामले में मात्रा के हिसाब से दुनिया में तीसरे स्थान पर है।
1: Well, so how far has this manufacturing journey traveled? Take steel, for example. Production here has risen from 81.7 million tons to 170 million tons in these 12 years.
0: और अगर मैं रेलवे की बात करूं तो सिर्फ एक दशक में भारतीय रेलवे ने 54,800 से ज्यादा कोच बनाए।
1: And Jaya, there is one more transformation worth noticing. That is, of course, in defense manufacturing. India's indigenous defense production has risen dramatically from 46,429 crore rupees to a record 1.78 lakh crore rupees in just 12 years.
0: लेकिन यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प होती है सायरा, क्योंकि भारत की मैन्युफैक्चरिंग कहानी सिर्फ उन चीजों को असेंबल करने से कहीं ज्यादा है जिन्हें पहले से कहीं और डिजाइन किया जा चुका है।
1: Absolutely, Jaya. It is about developing the components, materials, machinery, and technologies that lie at the heart of modern manufacturing. And that is where India's manufacturing journey takes a fascinating turn.
0: भारत सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर सेल, विमान, रेलवे और यहाँ तक कि परमाणु उपकरणों के लिए भी स्वदेशी तकनीकें विकसित कर रहा है।
1: That's right. ISRO and Semiconductor Labs have developed Vikram 3201 and Kalpana 3201 microprocessors designed for space applications.
0: इसके साथ ही भारत ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए एक पायलट प्लांट भी स्थापित किया है जो इलेक्ट्रिक वाहनों, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: And solar manufacturing has also seen a remarkable expansion. Module manufacturing capacity has risen from 2.3 gigawatts to 192 gigawatts in this journey of 12 years.
0: जैसा कि मशहूर अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड ने भी कहा था कि एक साथ आना शुरुआत है, साथ बने रहना तरक्की है और साथ मिलकर काम करना सफलता है। एक इकोसिस्टम बनाने की वही भावना यहाँ भी दिखाई देती है।
1: Absolutely. And now, well, the production-linked incentive schemes or PLI schemes, they have become another catalyst in this journey, giving industries an incentive to manufacture more in India and compete more strongly in the global market.
0: अब PLI स्कीमों की बात हो रही है तो बताएं कि इसमें 14 सेक्टर शामिल हैं। इस साल जून तक इनमें से 2,60,000 करोड़ रुपए का निवेश आया और 23,80,000 करोड़ रुपए का निर्माण और विक्रय हुआ है।
1: And this scheme also supports more than 15.5 lakh crore rupees in exports and contributed to 14.6 lakh jobs.
2: आज जब मैं मेक इन इंडिया की बात लेकर के आया हूँ तो हमने भारत की अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार के बदलाव लाना है, एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उसका सीधा बेनिफिट हिंदुस्तान के नौजवानों को मिले ताकि गरीब से गरीब परिवार, गरीबी से मिडिल क्लास की ओर बढ़े और उसका परचेजिंग पावर बढ़े तो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ बढ़ेगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उस चक्र को आगे बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण काम आज ये शेर का कदम है, ये लाइन का स्टेप मेक इन इंडिया।

0: अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भारत कितना निर्माण कर सकता है, बल्कि अब ज्यादातर सवाल ये है कि भारत कितना डिजाइन डेवलप कर सकता है, और इसका जवाब भारतीय टेक्नोलॉजी स्किल्स और क्षमताओं के जरिए सामने आ रहे हैं।
1: Absolutely, Jaya. Smartphones, semiconductors, railway coaches and their intricate components, solar modules and clean energy technologies, defense equipment and advanced systems. Together, they tell a story much larger than manufacturing alone.
0: बिल्कुल सायरा, और मेक इन इंडिया के 12 साल क्षमता की एक कहानी को दर्शाते हैं जहां भारतीय विचार हकीकत बनते हैं, भारतीय उद्योग मजबूत होते हैं और नई संभावनाएं आकार लेती हैं।
1: Yes, and before we wrap up, well, Mahatma Gandhi reminded us, the future

0: जुड़े हुए लोग होते हैं ऐसा कहा जाता है। तो जब भी हम पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं तो झारखंड की समृद्ध जनजातीय संस्कृति सदियों से इसकी पथ प्रदर्शक रही है। अभी हाल में ही झारखंड में प्रकृति का पर्व कर्मा बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, जो हमें पेड़ों की रक्षा और धरती की सेहत का संदेश देता है। सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से।
1: धानक गाछे झूमर लागल कर्मा गाछे झूमर, मांदर की इन्हीं सुरीली थापों के साथ अभी तीन दिन पहले ही झारखंड की माटी ने प्रकृति पर्व कर्मा मनाया है, जहां कर्म वृक्ष की डालियों को आंगन में रोपकर उनकी पूजा की गई। आज विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के मौके पर झारखंड की यही अनूठी परंपरा आधुनिक विज्ञान के जन स्वास्थ्य संदेश को मजबूती दे रही है। पलामू के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रोहित पांडे का भी मानना है,
2: आज चिकित्सा विज्ञान भी यही कह रहा है कि बढ़ता प्रदूषण एवं आबो हवा सांस की बीमारियां, एलर्जी और मानसिक तनाव बढ़ा रही है। अगर हम अपने पारंपरिक संस्कारों को अपनाएं, पेड़ लगाएं, कचरा प्रबंधन दुरुस्त रखें और प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें तो हम अपने समुदाय को कई गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं।
1: झारखंड की लोक संस्कृति में जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा केवल एक रस्म नहीं बल्कि जीवन शैली है। कर्मा पर्व में बोया जाने वाला जावा अनाज और पौधों के प्रति इसी वैज्ञानिक और संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। राज्य के पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल कहते हैं,
3: हमारे पूर्वजों ने कर्मा पर्व के जरिए हमें पेड़ों को भगवान मानना सिखाया है। आज इस पर्यावरण स्वस्थ दिवस पर हमारा यही संकल्प है कि हम सिर्फ त्योहार पर ही नहीं बल्कि साल भर अपने शहर को साफ और हरा भरा रखें।
1: स्पष्ट है कि जहां एक ओर आधुनिक विज्ञान पर्यावरण को बचाने के रास्ते सुझा रहा है, वहीं झारखंड की मिट्टी ने सदियों पहले कर्मा जैसी परंपराओं से इसकी राह दिखाई है। आज का ये दिन विज्ञान और परंपरा के इसी खूबसूरत मेल से एक स्वस्थ और निरोगी समाज बनाने की याद दिलाता है। परिक्रमा के लिए कुंदन वर्मा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
4: And now from Jharkhand, we go down south to Andhra Pradesh, where Indian traditional handicrafts play a significant role in the nation's economy and promote social empowerment. A premier example of this is the Etikopaka toy craft from the Anakapalli district of Andhra Pradesh, where local artisans are widely recognized for their deep commitment to preserving this rich heritage through eco-friendly practices. Let's hear more from our correspondent.
5: The craft of making Etikopaka toys is being practiced as a specialized skill by numerous rural artisans within the Varaha River Basin region. The local population, particularly the traditional families of the village, are acquiring this craft from generation to generations since four centuries and are engaging in sustainable self-employment. The toys are unique because they are environmentally friendly, made using all natural colors like kurkuma, raw turmeric roots for yellow or orange, jaffra seeds for red and leaves for color green, which makes the toys toxin free for children to play. Consequently, exporters and e-commerce platforms continue to dispatch these eco-friendly toys to international markets, catering to the growing global demand for sustainable playthings. The toy industry in Etikopaka has reached notable achievements such as obtaining a J tag in 2017. Currently, the sector employs hundreds of artisan families and produce a wide variety of items including traditional toys, utility boxes and home decor. The making of this art is known as turned wood lacquer craft, also called as Lakkabomalu. It was exhibited virtually in the India Toy Fair 2021 during COVID. Etikopaka toys are recognized by the Craft Council of India, Asian Heritage Foundation, and they are also exported internationally to Italy, Germany, France, Pennsylvania, and Canada. The artisans who make the craft also honored with several awards like National Innovation Foundation, UNESCO CCI, Seal of Excellence for Handicrafts, and others. To modernize the industry, the government, along with Handicraft Development Boards, is offering design intervention training, introducing contemporary shapes and enhancing digital market linkages to ensure these timeless wooden creations thrive in modern retail. With the inputs from Ruchita, this is Satyanarayana for Parikrama from Vishakhapatnam.
0: Shrotam, ab chalte hain khel ke maidan aur jante hain wahan ki halchal.
6: The Indian women's kabaddi team clinched the gold medal defeating Iran 37-34 in a closely contested final. Captain Pushpa Rana led India to victory. In athletics, Sawan Barwal bagged silver in the men's marathon, ending India's 44-year wait for a podium finish in the discipline, clocking 2 hours, 11 minutes and 37 seconds. His performance marked a personal best and a new national record. In shooting, Tilotama Sen, Vidarsa K. Vinod and Ashi Choksi secured silver in the women's 50-meter rifle 3-position team.

0: event, scoring 1,763 points. In mixed double squash, Joshna Chinnappa and Wilwin Senthilkumar won bronze. With these four medals,
1: well, definitely India has made a strong medal haul at the Aichi Nagoya Asian Games. It has added 5 medals across kabaddi, athletics, shooting and squash.
2: बिल्कुल, और इसके साथ ही भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने भी एशियाई खेलों में ईरान को 40 के मुकाबले 34 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम किया है. भारत मेडल टैली में 10वें स्थान पर है और उसके कुल पदकों की संख्या 28 हो गई है, जिनमें 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं. अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
3: In today's episode, we remember one of the towering figures of India's Renaissance in the 19th century, Ishwar Chandra Vidyasagar, who was born on this day in 1820. Through his multiple contributions to people and society, Ishwar Chandra left an indelible mark in the annals of Indian history.
4: He was a great social reformer, anti-colonial activist and philanthropist. A great educator and author, Vidyasagar is considered as the father of Bengali prose. He significantly rationalized, simplified and modernized the Bengali alphabet using woodcut type.
3: Born at Birshingho village, now a part of Midnipur district, Vidyasagar was a brilliant student from childhood. His quest for knowledge was so intense that he used to study under a street light, as it was not possible for his family to afford a gas lamp at home. He cleared all the examinations with excellence and in quick succession.
4: In 1839, Ishwar Chandra Vidyasagar cleared the Sanskrit law examination and joined Fort William College of Kolkata as head of the Sanskrit department. Later, he became principal of the same college. He excelled so well in his undergraduate studies of Sanskrit and philosophy that his college gave him the honorific title Vidyasagar, Ocean of Knowledge.
3: Vidyasagar championed the upliftment of the status of women, especially widows in Bengal. He was particularly moved by the plight of child widows who were often ill-treated and tortured. Vidyasagar also fought against the system of polygamy. Despite strong opposition of the then society, he ran a revolutionary agitation for women's education and rights to remarriage for leading a normal life.
2: आज स्वतंत्र भारत के महानतम योद्धाओं में से एक सूबेदार जोगिंदर सिंह जी की भी जयंती है. 26 सितंबर 1921 को पंजाब के मेगा में जन्मे जोगिंदर सिंह जी ने साल 1936 में भारतीय सेना की फर्स्ट सिख रेजिमेंट में शामिल होकर देश सेवा का संकल्प लिया था. साल 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के बूम ला पास पर गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने महज 20 जवानों के साथ चीनी सेना के 200 से ज्यादा सैनिकों के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया था. उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया.

0: Today we are of course remembering an actor who refused to age, Jaya. Yes, India's very own Gregory Peck. We are talking about Dev Anand, whose birth anniversary is today.
1: बिल्कुल. और जब बात होती है पहले पर्दे के इस जादूगर की, तो इनके नाम के बिना महफिल अधूरी होती है.

तो देवानंद साहब ऐसे एवरग्रीन स्टार है हमारे, जिनकी झुकी हुई गर्दन, अनोखा हेयर स्टाइल और आंखों पर चश्मा और तेज तेज बात करने का अंदाज आज भी सिनेमा प्रेमियों को दीवाना बना

0: देता है। आज उनकी जयंती है। 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शकरगढ़ में एक मध्यम वर्गीय वकील परिवार में जन्मे धर्मदेव पिशोरीमल आनंद ने जब मुंबई का रुख किया तो उन्होंने रोमांटिक अभिनय की एक नई परिभाषा गढ़ दी।
1: That's right. Considered as one of the greatest and most successful actors in the history of Indian cinema, through a career that spanned over 6 decades, he worked in more than 100 films. And Jaya, मजे की बात ये है कि usually देखा जाता है कि जो actors उम्र के जब उम्र की ढलान पे होते हैं तो वो लोग थोड़ा सा method acting करने लगते हैं या थोड़े serious किरदार निभाते हैं, but देव आनंद का record है, उन्होंने कभी भी बाप का किरदार निभाया ही नहीं। He always was the hero of his films, even when he was, not so young, you can say, but he was always young at heart. Aur kisi ne ek bade acche se interview mein unse pucha tha, if you have to sum up your life, then what would be that line? So he actually remembered that song, ke main har fikr ko dhuye mein udata chala gaya, zindagi ka saath nibhata chala gaya.
0: Bilkul. और कहते हैं ना कि देवानंद साहब केवल एक अभिनेता नहीं थे, वे जिंदगी को जिंदा दिल से जीने का एक खूबसूरत फलसफा थे। उन्होंने हमेशा सिखाया कि मुश्किलें कैसी भी हो मुस्कुराते रहना चाहिए, जैसा कि अभी आपने इस गाने में भी बताया। तो आइए सुनते हैं उनकी इसी एवरग्रीन मुस्कान को नमन करते हुए उन्हीं की फिल्म हम दोनों का यह कालजयी गीत, जो उनके पूरे जीवन के दर्शन को बयां करते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।

0: देवानंद साहब के इसी अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें साल 2001 में देश के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण और साल 2002 में सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया था।
1: And now, before we move on to the next personality, सबसे पहले उनकी आवाज सुनते हैं और फिर उनका जो है नाम लेंगे, right?
0: बिल्कुल।

तो ये मखमली और दर्द भरी आवाज किसी और की नहीं बल्कि हिंदी और बांग्ला सिनेमा के दिग्गज गायक और संगीतकार हेमंत कुमार यानी हमारे प्यारे हेमंत मुखर्जी जी की है और आज उनकी पुण्यतिथि है। 26 सितंबर 1989 को इस दुनिया को अलविदा कहने वाले हेमंता का जन्म पवित्र नगरी वाराणसी में हुआ था और उनका लालन पालन कोलकाता के एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने साहित्य की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी ताकि अपना पूरा जीवन संगीत के चरणों में अर्पित कर सके। हेमंता केवल एक बेजोड़ गायक नहीं बल्कि एक युग प्रवर्तक संगीतकार भी थे। फिल्म नागिन के कालजयी संगीत और उनकी अमर बीन धुन के लिए उन्हें साल 1956 में प्रतिष्ठित फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार से नवाजा गया था।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी के क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और विमेन

0: वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विष्णुनाथ, सांसद एन के प्रेमचंद्रन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य लोग शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुरनूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर ही नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरोपेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। महाराष्ट्र के मुंबई में प्रतिष्ठित लाल बागचा राजा और चिंचपोकलीचा चिंतामणि सहित कई गणपति प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया गया। हजारों श्रद्धालु 21 घंटे से अधिक समय तक चले जुलूस में शामिल हुए। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: நேரம் 6:05 நிமிடம் ஆகாஷ்வாணி 100.1 MHz FM கோல்ட் அலைவரிசை.
3: நேயர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது ஆகாஷ்வாணியின் சென்னை FM கோல்ட் 100.1.
4: பர்சனல் லோன் ஆஃபர்
5: மறுபடியுமா? இதையும் பிளாக் பண்றேன்.
4: துபாய்க்கு ஃப்ரீ ட்ரிப்,
5: இதையும் பிளாக் தான். எவ்வளவு நம்பர்ஸ் தான் பிளாக் பண்றது?
6: போன்ல பிளாக் பண்றது மட்டும் ஸ்பேம் ஸ்டாப் பண்ணாது. ஒவ்வொரு தடவையும் புது நம்பர்ல இருந்து கால் வரும்.
5: அப்ப நான் என்ன பண்றது?
6: கால் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு ட்ராய் டிஎன்டி ஆப்ல ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. கேட்டகரியை செலக்ட் பண்ணுங்க, பேங்கிங், டிராவல், இன்சூரன்ஸ். அப்புறம் சப்மிட் பிரஸ் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் நேரம் தான் ஆகும்.
5: இதனால எல்லாருக்கும் ஸ்பேம் கம்மி ஆகுமா?
6: ஆமா, ரிப்போர்ட்ஸ் வந்த உடனே ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க.
7: ஜஸ்ட் பிளாக் பண்ணாம ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. ட்ராய் டிஎன்டி ஆப் இப்பவே பிளே ஸ்டோர் இல்ல ஆப் ஸ்டோர்ல டவுன்லோட் பண்ணுங்க. ரிப்போர்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க.
4: பர்சனல் லோன் ஆஃபர்
5: மறுபடியுமா? இதையும் பிளாக் பண்றேன்.
4: துபாய்க்கு ஃப்ரீ ட்ரிப்,
5: இதையும் பிளாக் தான். எவ்வளவு நம்பர்ஸ் தான் பிளாக் பண்றது?
6: போன்ல பிளாக் பண்றது மட்டும் ஸ்பேம் ஸ்டாப் பண்ணாது. ஒவ்வொரு தடவையும் புது நம்பர்ல இருந்து கால் வரும்.
5: அப்ப நான் என்ன பண்றது?
6: கால் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு ட்ராய் டிஎன்டி ஆப்ல ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க. கேட்டகரியை செலக்ட் பண்ணுங்க, பேங்கிங், டிராவல், இன்சூரன்ஸ். அப்புறம் சப்மிட் பிரஸ் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் நேரம் தான் ஆகும்.
5: இதனால எல்லாருக்கும் ஸ்பேம் கம்மி ஆகுமா?
6: ஆமா.

0: प्लास्टिक के इस्तेमाल और उसे फेंकने की हमारी आदतों में भी बदलाव आए। देश के अलग अलग शहरों और समुदायों में किए जा रहे कुछ स्थानीय प्रयास बताते हैं कि प्लास्टिक कचरे को कम करने से लेकर उसे दोबारा उपयोगी बनाने तक कई स्तरों पर काम किया जा सकता है। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि प्लास्टिक कचरे से निपटने का तरीका जमीन पर कैसे दिखाई देता है। इसके लिए हम कुछ ऐसी पहल और कहानियों को देखेंगे जो प्लास्टिक की पूरी यात्रा को 5 शब्दों में समझाती है, रिड्यूस, रीयूज, रिटर्न, रिकवर और रिक्रिएट। आइए अब इन 5 पहलुओं को अलग अलग उदाहरणों के जरिए समझते हैं।
1: प्लास्टिक कचरे को रिड्यूस करने की शुरुआत वहीं से हो सकती है जहां उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा दिखाई देता है, यानी बाजार। तमिलनाडु के त्रिची में नगर निगम ने वर्ष 2022 में बाजारों में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए टेनूर, के नगर और वरयूर के 3 किसान बाजारों को चुना गया। इन बाजारों में 220 विक्रेताओं के साथ काम किया गया और उन्हें सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। इसका असर भी दिखाई दिया। टेनूर बाजार में एक वर्ष में 2,200 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचा गया। वहीं के नगर में 4 महीने में 620 किलोग्राम और वरयूर में 6 महीने में 300 किलोग्राम प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचाव हुआ। लेकिन जब किसी विकल्प को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना हो तो उसका आसानी से उपलब्ध होना भी जरूरी है। महाराष्ट्र के विटा शहर में नगर परिषद ने इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए 5 थैला एटीएम लगाए हैं। ये मशीनें आम वेंडिंग मशीन की तरह काम करती है। ग्राहक सिक्का या नोट डालकर कपड़े का थैला ले सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे कदम यानी रिटर्न की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस्तेमाल किए गए दूध के पाउच वापस लेने के लिए बायबैक पहल की शुरुआत की गई। लोगों को इस्तेमाल किए गए पाउच तय संग्रह केंद्रों पर जमा करने के बदले ताज़ा दूध और छूट जैसे प्रोत्साहन दिए गए। इसके बाद आता है रिकवर, यानी इस्तेमाल हो चुका प्लास्टिक को कचरे के ढेर में जाने से पहले निकालना और उसे दोबारा उपयोग लायक बनाना। बेंगलुरु में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रोजेक्ट पृथ्वी के अंतर्गत 2019 में सफाई साथियों के लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी स्वच्छता केंद्र स्थापित किया गया। यहाँ प्लास्टिक कचरे को अलग किया जाता है और फिर उसे श्रेडिंग और बेलिंग के जरिए आगे रिसाइकलिंग के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन प्लास्टिक की कुछ किस्मों को दोबारा इस्तेमाल करना और भी मुश्किल होता है। चॉकलेट, बिस्किट और चिप्स के पैकेट या शैम्पू के छोटे पैकेट जैसे मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक में अलग अलग तरह की सामग्री की कई परतें होती हैं। इसलिए इन्हें अलग करना और रिसाइकल करना आसान नहीं होता। पंजाब के पटियाला में ऐसे प्लास्टिक को एक नया उपयोग देने के लिए प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैसिलिटी स्थापित की गई। यहाँ कम मूल्य वाले प्लास्टिक को अलग करके साफ किया जाता है और छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। इसके बाद इन्हें चिपबोर्ड में बदला जाता है। इससे तैयार सामग्री का इस्तेमाल फर्नीचर, छत और अस्थायी ढांचे बनाने में किया जा सकता है। यानी रिक्रिएट का अर्थ है ऐसे प्लास्टिक को भी नए उपयोग में लाना जिसे पहले दोबारा इस्तेमाल करना मुश्किल माना जाता था।
0: श्रोताओं, प्लास्टिक कचरे से निपटने के ये प्रयास ये दिखाते हैं कि बदलाव की शुरुआत स्थानीय स्तर पर हो सकती है, लेकिन स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की चुनौती केवल प्लास्टिक तक सीमित नहीं है। घर से निकलने वाले कचरे से लेकर शहरों में जमा पुराने कचरे तक पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाना जरूरी है। इसी सोच के साथ अब स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन को एक व्यापक व्यवस्था के रूप में मजबूत करने पर बल दिया जा रहा है। इसमें कचरे को अलग अलग करने, उसके सही संग्रह और वैज्ञानिक तरीके से निपटने के साथ साथ पुराने डंप साइट को साफ कर उस जमीन का दोबारा उपयोग करने पर भी ध्यान है। आइए अब समझते हैं कि इन प्रयासों के जरिए शहरों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को किस तरह बदला जा रहा है।
1: ठोस कचरे के प्रबंधन की पूरी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 महत्वपूर्ण है। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए और वर्ष 2016 के नियमों की जगह लेते हैं। इनका उद्देश्य कचरे के संग्रह से लेकर उसके प्रसंस्करण और निपटान तक पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। नए नियमों में कचरे को 4 अलग अलग हिस्सों में रखने पर

0: जोर दिया गया है। पहला है गीला कचरा, दूसरा सूखा कचरा, तीसरी श्रेणी है सैनिटरी वेस्ट और चौथी श्रेणी है स्पेशल केयर वेस्ट। लेकिन शहर की चुनौती केवल आज पैदा हो रहे कचरे की नहीं है, कई शहरों में वर्षों से जमा पुराने कचरे के बड़े ढेर मौजूद हैं। यहीं से लक्ष्य जीरो डंप साइट की जरूरत सामने आती है। देश में करीब 2479 पुराने डंप साइट की पहचान की गई। इनमें करीब 25 करोड़ मीट्रिक टन पुराना कचरा जमा है और ये लगभग 15,000 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। इन पुराने डंप साइट के उपचार के लिए बायो माइनिंग जैसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसमें पुराने कचरे को निकालकर अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। मिट्टी जैसी सामग्री, धातु, रिसाइकलिंग योग्य सामग्री और ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को अलग किया जाता है। इन प्रयासों के जरिए अब तक 60% से अधिक पुराने कचरे को प्रोसेस किया जा चुका है। पुराने कचरे को हटाने का असर केवल सफाई तक सीमित नहीं रहता। डंप साइट से कचरा हटाने के बाद उस जमीन को फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसका एक उदाहरण देखने को मिलता है। शहर में करीब 40 एकड़ का क्षेत्र लंबे समय तक कचरा डालने की जगह के रूप में इस्तेमाल होता रहा। करीब 7 वर्षों तक ये शहर का प्रमुख कचरा निपटान स्थल था। यहाँ जमा कचरे का बायो माइनिंग के जरिए उपचार किया गया। हर दिन करीब 400 टन कचरे को प्रोसेस किया गया और उससे कचरे से तैयार ईंधन, काली मिट्टी और रिसाइकलिंग योग्य सामग्री अलग की गई। धीरे धीरे कचरे का ढेर हटता गया और इसी 40 एकड़ जमीन को अब कचरे से कंचन राप्ती इको पार्क के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ हरे मैदान, पैदल और जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के खेलने की जगह, खुला जिम, योग क्षेत्र, सौर प्रकाश और जल संरक्षण की सुविधाएं हैं। स्थानीय आजीविका के लिए भी जगह बनाई गई है। महिला स्वयं सहायता समूह शक्ति की रसोई यहाँ एक रेस्टोरेंट चलता है। रोज करीब 500 लोग पार्क पहुँच रहे हैं। दिल्ली के भलसवा डंप साइट पर भी पुराने कचरे का उपचार जारी है। नागपुर के भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड में भी पुराने कचरे का उपचार किया गया है। कर्नाटक के रायचूर में भी करीब 35 एकड़ के याकलपुरा डंप साइट को वैज्ञानिक तरीके से बदला जा रहा है। यहाँ करीब 62,252 मीट्रिक टन कचरे का उपचार किया गया है और लगभग 22 एकड़ शहरी जमीन को दोबारा उपयोग में लाया जा चुका है। समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
1: श्रोताओं, स्वच्छता की ये यात्रा किसी एक अभियान या एक दिन तक सीमित नहीं है, इसे लगातार चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखना जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्रोत पर कचरे को अलग करना, घर घर से कचरा संग्रह, उसका वैज्ञानिक प्रसंस्करण और उपयोगी सामग्री की रिकवरी, इन सभी पर एक साथ काम किया जा रहा है। प्लास्टिक की कहानी भी इसी बदलाव का हिस्सा है। आगे की चुनौती इन प्रयासों को रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा बनाने की है। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 12 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस यात्रा में अलग अलग शहरों की ये कहानियाँ एक बात सामने रखती है, बदलाव हमेशा बड़े कदम से शुरू नहीं होता। कई बार इसकी शुरुआत एक थैले, एक पाउच, कुछ किलोग्राम प्लास्टिक या एक पुराने कचरे के ढेर से होती है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक हैं दानिश जैदी।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः एआई माध्यमेन निर्मितानां अवसराणां उपयोगाय संबद्ध संकटान् निवारणाय आहूतवान्। न्यूयॉर्क नगरे अंतरराष्ट्रीय शान्तेः सुरक्षायाः च संदर्भे एआई इत्यस्मिन् विषये आयोजिते कार्यक्रमे सः अध्यक्षः अभवत्। श्री जयशंकरः अद्य न्यूयॉर्क नगरे 81वें संयुक्त राष्ट्र संघस्य सामान्य सभां संबोधयिष्यति। विदेश सचिवः विक्रम मिश्री इत्येषः विकासशील राष्ट्राणां कृते अधिकं स्वरं दातुं यूएनएससी इत्यस्य तात्कालिक परिष्काराय आहूतवान्। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेशेषु च निरन्तर वृष्टिः

0: हिंदी प्राची प्रिया
1: नमस्कार। मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन। श्रोताओं, व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीटी कोड 011 भी डायल करें। चर्चा को और समृद्ध बनाने के लिए हमारे साथ भाग ले रहे हैं बाजार और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा और पुनीत जैन। शिशिर जी, पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
0: A warm welcome to both of you.
2: Thank you.
3: Thank you.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: यूनाइटेड स्टेट्स रिजेक्ट्स ईरान 7-day proposal to reopen the Strait of Hormuz.

0: 0011 भी डायल करें। चर्चा को और समृद्ध बनाने के लिए हमारे साथ भाग ले रहे हैं बाजार और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा और पुनीत जैन। शिशिर जी, पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
1: A warm welcome to both of you.
2: Thank you.
3: Thank you.
0: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
1: यूनाइटेड स्टेट्स रिजेक्ट्स ईरान 7-डे प्रपोजल टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इंडियन स्टॉक मार्केट रिमेन्स अंडर कंट्रोल ऑफ बेयर्स फॉर 7th कंसेक्यूटिव वीक। And Wall Street wraps up week with notable gains.
0: अमेरिका ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य को खोले जाने वाले ईरान के 7-दिवसीय प्रस्ताव को खारिज किया। भारतीय शेयर बाजार पर लगातार 7वें सप्ताह मंदड़िये हावी और वॉल स्ट्रीट ने बढ़त दर्ज करते हुए सप्ताह का अंत किया।

0: good in terms of Indian economy.
1: Now we are entering the holiday season, or rather the festival season, from October. What do you think? How will the markets take it? How will the economy take it?
0: That's the only good news which are coming, because when you have Navratri from 11th of October, of course we are going to have good purchase, but more purchase will come only in the month of November when we'll have Deepavali. So combination of these two festivals starting from October 11th to for the 9th November, I believe Deepavali is there. So 7th is the Dhanteras. So combination of these three will bring some cheers to the FMCG market, to the electronic market.
1: Hopefully.
0: Yeah. But the only concern at this moment is that the price rise, because many of the companies have indicated that they are going to increase the price. So that may dampen the sentiment. So I may be sounding very pessimist at this moment, but the reality is that the good news are very scarce to find.
1: So Puneet, inflationary trends coming up, as Shishir said, is worrisome.
2: Absolutely, Rajesh. And inflation is technically, it really kills demand. And that's what we've seen, in fact. If you, while you look at the numbers, the GDP numbers might be slightly higher, but it definitely dampens the mood for consumption. Going forward, like you mentioned, there's going to be festive season. We expect the demand to be better, but I think it will be below what most market expectations were. In fact, one of the first indications was the gold sales in this in the last few days, and we've seen a decline in gold sales because of higher prices. So clearly price is a mood buster as far as demand is concerned.
3: Is beech hamare sath Mumbai se Ratnakar jud gaye hain. Ratnakar ji, karyakram mein aapka abhinandan. Kripya apna sawal poochiye.
4: Hello
3: ji, apna sawal poochiye.
4: Ha, good evening madam. Mera sawal hai ki abhi jo market mein AI related बहुत कॉम्पिटिशन्स, नहीं तो वो पार्टिसिपेट करने के लिए अपील होता है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने में आदमी का कितना नुकसान नहीं तो फायदा हो सकता है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? और दूसरा सवाल एक है कि अभी जो एकादा स्क्रिप्ट शेयर स्क्रिप्ट आईपीओ की इश्यू होने के बाद जब भी पहले लिस्टिंग होता है, अच्छा कंपनी का समझो लिस्टिंग हो गया, तो वो ग्लोबली रिनाउन होने के लिए कितना समय लगेगा, और तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, वो ग्लोबली ऑथेंटिकेट कैसे हो जाए?
0: देखिए, जो पहला प्रश्न आपका है कि एआई रिलेटेड कंपनीज़ का, अगर आप बीते सप्ताह का देखें या उसके पहले सप्ताह में देखें, हमने दो तरीके का ट्रेंड देखा. एक बार हमने देखा कि जब जो एआई बेस्ड कंपनीज थी या जो टेक्नोलॉजी कंपनीज थी, उसमें बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि एआई को लेकर के जो दुनिया की कंपनियाँ, उन्होंने कहा था कि उसकी रफ्तार को कम करना है. और उसके पहले ये कहा गया था कि जो एआई कंपनीज़ हैं, उनको अपनी सुविधाएं विकसित करने के लिए आईटी कंपनियों की मदद की ज़रूरत है. तो इस समय मुझे लगता है कि एआई कंपनी को लेकर के उत्साह रखना चाहिए, लेकिन अति उत्साह नहीं होना चाहिए. आप अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा, जैसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपये शेयर में लगाने के लिए है, तो आप 10 रुपये या 15 रुपये अगर आप एआई में लगाते हैं, और एक कहते ना कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर के चलें, तो वो बेहतर होगा. तो ये आपके पहले प्रश्न का जवाब है. दूसरा आपका प्रश्न जो था, वो शायद थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप उस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख पाए, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईपीओ के बाद जब कोई कंपनी लिस्ट होती है, तो उसको ग्लोबली रिकॉग्निशन होने में कितना समय लगता है. देखिए, ये कोई समय तय नहीं है. एक कंपनी अगर अच्छी है, तो उसको वैश्विक स्तर पर या घरेलू स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए आईपीओ की ज़रूरत नहीं होती. उसे अपने प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, उसे अपने सामान की ज़रूरत होती है, अपनी सेवाओं की ज़रूरत होती है. आईपीओ एक तरीके से निवेशकों का भरोसा जीतने की कोशिश है. निवेशकों को एक उम्मीद जगह, मतलब निवेशकों के बीच एक उम्मीद ये देता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी. तो दो अलग अलग पहलू हैं, और कई कंपनियां हैं अगर आप देखें आईटी क्षेत्र में, जो कि वैश्विक स्तर पर भी काफ़ी अच्छा नाम कर रही हैं, और वो आईपीओ में भी उनको आए हुए काफ़ी समय हो गया, उनके शेयर प्राइसेस भी ठीक ठाक चल रहे हैं. तो मुझे लगता है कि उसके लिए कोई समय सीमा तय करें कि कितने समय में उनको वैश्विक ख्याति मिलेगी, शायद वो उचित नहीं होगा.
3: बेंगलुरु से हमारे साथ एनआर प्रसाद जुड़ रहे हैं. प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछिए.
5: Hi, good evening, Market Mantra. This is Anak Prasad from Bangalore. Hello, Rajesh ji. Hello, Priya ji.
1: Hello.
5: Mr. Sinha. Mr. Sinha.

0: में उतार चढ़ाव का संकेतक इंडिया विक्स सप्ताह के दौरान 6.7% बढ़कर 12.16 पर बंद पहुंच गया। क्षेत्रीय सूचकांकों में निफ्टी आईटी लगभग 2.5%, निफ्टी प्राइवेट बैंक 1.5% और निफ्टी एनर्जी में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं निफ्टी रियल्टी 3% की बढ़त के साथ सबसे अधिक लाभ में रहा। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा और FMCG सूचकांकों में भी करीब 1% की बढ़त दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस सप्ताह 6 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.82 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पुनीत, लगातार 7वें सप्ताह की गिरावट अगर हम देखें, किस दिशा में हमारा बाजार अब रुक करके बैठा है?
1: देखिए, जैसे शिशिर ने शुरुआती दौर में ही प्रोग्राम में बताया था कि 4 फैक्टर्स हैं इस वक्त जो बाजार को दबाव में ला रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन हैं, जो वॉर का माहौल है, जो ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, उससे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है भारत के बाजारों पर। US बॉन्ड यील्ड्स 5% से ऊपर चली गई हैं, उससे भी हमारे जो इनफ्लोज हैं, जो लिक्विडिटी है, वो उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और चौथा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, लगातार सेलिंग चल रही है। इस महीने भी करीब करीब 20,000 करोड़ का नेट सेलिंग FIIs ने किया है। और कुछ हद तक मैं कहूँगा कि घरेलू बाजारों को देखें तो एक तो महंगाई, थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, और जो एक तांता लगा था IPOs का, उसने भी काफ़ी लिक्विडिटी बाजार से करी है। जब तक ये फैक्टर्स नहीं बदलेंगे, खास तौर से जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि उसी से क्रूड कच्चे तेल की कीमतों पर, उसी से इन्फ्लेशन पर, US बॉन्ड यील्ड, ये सभी उससे अफेक्टेड हैं। तो मुझे लगता है कि ये जब माहौल बदलेगा तभी कोई बड़ी हम यहाँ से बदलाव देख सकते हैं। बाजार एक ट्रेडिंग रेंज में लगातार 7 सप्ताह से बाजार गिरा है। मेरा ऐसा अनुमान है कि थोड़ा यहाँ से पुल बैक हम देखेंगे और बाजार में शायद अगले सप्ताह हम थोड़ा पुल बैक देख सकते हैं, बिकॉज वैल्यू बाइंग होगी डेफिनेटली। पर मुझे कोई सस्टेन्ड बाइंग या सस्टेन्ड अप ट्रेंड तब तक नहीं होगा जब तक ये फैक्टर्स में बदलाव नहीं आएगा।
0: फरीदाबाद से हमारे साथ सुभाष जुड़ रहे हैं। सुभाष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार सर। सर, मैं ये जानना चाहता था कि इस लगातार 2 साल से ये निफ्टी और सेंसेक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर कहाँ जाएंगे? सर, ये तो बिल्कुल भी, हमें तो बैंक जो FD जो रिटर्न मिलता है वो भी बिल्कुल नहीं मिल रहा, नेगेटिव में जा रहे हैं जितने।
1: सुभाष जी नमस्कार। आप सही कह रहे हैं कि यदि हम पिछले 2 वर्षों का हम आंकड़े देखें तो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स को पिछले 2 वर्षों में बहुत बड़ी बढ़त नहीं मिली है। हालांकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर है वहाँ पर डेफिनेटली प्रॉफिट आए हैं, लेकिन जो लार्ज कैप्स हैं और इंडेक्स को अगर हम देखें तो वहाँ बहुत प्रॉफिट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ और वर्षों जाएं, यानी हम अगर आप 5 वर्ष से स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टेड थे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं इन्वेस्टर्स को वो काफ़ी रहे हैं। 9 से 10% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिली है। तो इसका जो मैं कहूँगा कि मैसेज है वो ये है कि आप शॉर्ट टर्म में मत घबराइए, ऐसा रहता है। हमने बहुत बार देखा है पिछले कई वर्षों में, 2-3 दशकों में हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स में कभी कभी रिटर्न नहीं आती हैं। लेकिन यदि आप यहाँ बने रहेंगे, अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे 4-5 वर्ष में या उससे ज़्यादा, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिटर्न आएगी। और हमारे पिछले कई वर्षों के, अगर 40-50 साल के हम डेटा देखते हैं, तो ये बात तय है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अबव 5 ईयर्स, उसमें आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगी। आप इससे परेशान ना हो, आप मेरे ख्याल से आप इसमें बने रहें तो बेहतर है।
3: Moving on, US stock markets ended higher yesterday, supported by gains in AI-related technology stocks. However, elevated crude oil prices and a recent surge in US Treasury yields kept investors on edge. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average climbed 0.9%, while the S&P 500 and NASDAQ Composite rose 0.5% each. For the week, NASDAQ rose over 2% after it notched a record high close on Tuesday. The S&P gained 1.2% and the Dow added 0.3% over the week. Meanwhile, US President Donald Trump said he had a very productive meeting with Chinese President Xi Jinping following a 3-day summit that showcased personal diplomacy rather than major breakthroughs in economic relations.
0: वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियंस की

0: 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। और दिल्ली से कृपा शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
1: जी धन्यवाद। मैं ये दो सवाल है मेरे, एक तो
0: जी अपना सवाल पूछिए।
1: नमस्कार, हेलो।
2: हाँ, बोलिए,
0: अपना सवाल पूछिए।
1: जैसे कि जीएसटी घटने के बाद कंपनियों ने अब क्या नई तरीके जमाई है कि जो रेट थे वो कुछ उनके अपने एमआरपी बढ़ा दिए और वो रेट के रेट वैसे कि इनके वैसे ही चलते आ रहे हैं, ये कुछ चीजों में हमने चेक किया। दूसरा सवाल मेरा यह है, जैसे कि हमने पहले एक व्हाइट सोना खरीदा हुआ है तो ये इसकी जानकारी चाहिए कि व्हाइट सोने का रेट मार्केट से, में सुना है कि येलो सोने से महंगा है।
3: मेरे ख्याल से जीएसटी के मामले में दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपने कहा कि जो खुदरा मूल्य है, अधिकतम खुदरा मूल्य जिसको हम लोग एमआरपी के नाम से जानते हैं, वो बढ़ा दिया गया है। देखिए, कंपनी के एक ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि कच्चे सामान के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, कच्चे माल के, और उसका असर आपकी कंपनी के अलग अलग उत्पाद हैं उनके ऊपर देखने को मिला है। खासतौर पर अगर मैं गाड़ियों की बात करूँ जिनके दाम जो हैं वो बढ़े हैं, लेकिन अगर फिर भी जो अध्ययन किए गए हैं उस अध्ययन में ये है कि जीएसटी की कटौती जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू हुए थे उसके बाद दाम में जो कमी आई, अभी बढ़ोतरी तो हुई लेकिन वो कमी पूरी तरह से हम कहें कि खत्म हो गई है वो अभी उचित नहीं है, ये अध्ययन में सामने आया है, बहुत सारे आंकड़े भी सामने आए हैं। दूसरा आपने प्रश्न पूछा है वाइट गोल्ड का, मुझे लगता है कि आप प्लैटिनम का जिक्र कर रहे हैं जहां पर ये चर्चा होती है। और दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखिए कि अलग अलग गोल्ड की भी बात की जाती है, कहीं पिंक गोल्ड की बात की जाती है, ग्लो रेड गोल्ड की बात की जाती है, तो ये वो सोना है जो कि हम जिस गोल्ड मेटल की बात करते हैं, जिस सोना धातु की बात करते हैं वो ये नहीं है, ये मिश्रित धातु है। और वाइट गोल्ड एक अलग तरीके का, आप जैसे प्लैटिनम का, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से कि वो उसके दाम अलग हैं, वो निश्चित तौर पर उसकी मांग काफ़ी ज़्यादा है, और बाकी जो आप अलग अलग सोना देखते हैं वो सोना जो है वो मिश्रित धातु है, ये ध्यान रखें।
2: ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिस्प्लेड मिक्स्ड ट्रेंड दिस वीक। ब्रेंट क्रूड नवंबर फ्यूचर्स रोज 0.4% टू सेटल एट $104.32 per barrel. West Texas Intermediate Crude November futures tanked 3.8% to end at $92.41 per barrel over the week. However, oil prices eased over the last few trading sessions as markets grew hopeful of a phased truce between the US and Iran, with both sides reportedly in touch through mediators on the sidelines of the UN General Assembly meeting. Now, we read in the headline story about US rejecting Iran's 7-day proposal to reopen Strait of Hormuz. In such a scenario, Puneet, how should India be navigating the growing crude oil prices, especially if they continue to persist on a northern side?
4: So, Rajesh, clearly for India, the challenge is enormous, because not only do we have to contend with rising crude oil prices in the international market, we have limit, because we are the world's second largest importer of crude oil. So clearly we need very large supplies also. However, what geopolitical tensions are dictating to us, and particularly the latest trade tariff threat by the US on imports from Russia, I think India has really its task cut out in a sense, because we need to import energy from Russia, because there is no other large supplier of energy like Russia. And therefore, I think while we have we are looking at Brent crude about $100-$105, we really need to be cautious and going forward need to maintain supplies also to see that they are economic in nature.
0: शिशिर, इस संदर्भ में अगर देखें तो वैश्विक स्तर पर एक दबाव पड़ता है, चाहे वो सप्लाई चेन हो या और भी कोई अन्य आपूर्ति की जो चीज़ें हैं, जो हर हर देश को जिसकी ज़रूरत है, दबाव पड़ता है। ऐसे में किस

0: तरह से हम आगे आने वाला भविष्य देख रहे हैं?
1: देखिए, दो बातें होती हैं। एक तो होता है कि आप विविधीकरण करते हैं कि आप, चलो आप एक जगह से तेल ना लेकर के आप चार जगह से और तेल लेते हैं
0: जी।
1: और हमारे लिए ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए केवल ब्रेंट का प्राइस नहीं होता, हम जिसको कहते हैं इंडियन बास्केट का जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उसमें कई तरह के जो स्रोत हैं वो शामिल होते हैं। तो अभी की स्थिति में जो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि हम हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जो कुछ घटना चल रही है, जो वैकल्पिक व्यवस्था है, उसमें एक रूस का रास्ता थोड़ा सा हमारे लिए महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें टैरिफ ज़्यादा देना पड़े। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि जब जयशंकर साहब की रवियो साहब से बातचीत हुई, उसमें उन्होंने ये मुद्दा उठाया और यूएस की ओर से, अमेरिका की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया कि राष्ट्रपति के पास वो विशेषाधिकार है कि किसी एक देश के प्रति यदि वो कुछ कमी या रियायत दे सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस बातचीत का सार्थक नतीजा निकलेगा और हमारे ऊपर उतना असर नहीं पड़ेगा जितनी हम आशंकित हैं।
0: नोएडा से हमारे साथ आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश जी, कार्यक्रम में अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हेलो मैम, नमस्ते सर को भी नमस्ते। मैं आकाश नोएडा से बोल रहा हूँ। मैंने सर, मेरा सवाल ये है, जैसे मैं 29 एज है मेरी और शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है अभी, जैसे हमारी एफडी ब्रेक होने वाली है, मैच्योर होने वाली है, तो हम तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट, तो हम किस, कौन हमें गाइड करेगा, कैसे मतलब हम कर सकते हैं उसके लिए, कौन बता पाएगा हमारे को अच्छे मतलब नॉलेज उसके लिए?
1: आकाश, मेरी एक सलाह है कि अगर आपको शेयर बाज़ार की जानकारी नहीं है तो शेयर बाज़ार ना जाएं। बाज़ार रातों रात आपको एक, जिसे कहते हैं ना, क्या एक आपको निवेशक नहीं बना सकता है। तो आपके लिए अभी बेहतर यह है कि अभी थोड़ा समय इंतज़ार करिए, पहले समझिए बाज़ार को। बहुत सारे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्रोत हैं, सेबी के कई सारे वर्कशॉप्स होते हैं, वहाँ पर आप समझ सकते हैं, उसके बाद ही आप निवेश करें। अभी के समय में मेरी सलाह है ना जाएँ, बेहतर होगा।
0: नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR प्रारूप 15 अक्टूबर से लागू होगा। इसके अंतर्गत 2,000 रुपये तक के UPI लेन देन पर कोई MDR नहीं लगेगा। हालांकि कुछ विशेष श्रेणी के व्यापारियों के लिए प्रतिशत के बजाय एक समान यानी फ्लैट MDR लागू होगा।
3: Finance Minister Nirmala Sitharaman has expressed confidence that India can achieve economic growth of over 10%, stressing on the need for a greater adoption of technology and innovation.
0: बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी, पुनीत जी, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए
1: धन्यवाद।
3: थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, यूनाइटेड स्टेट्स रिजेक्ट्स ईरान्स 7-डे प्रपोजल टू रीओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इंडियन स्टॉक मार्केट्स रिमेन्स अंडर कंट्रोल ऑफ बेयर्स फॉर 7th कंसेक्यूटिव वीक एंड वॉल स्ट्रीट रैप्स अप वीक विद नोटेबल गेन्स। That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सरकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विष्णुनाथ, सांसद एनके प्रेमचंद्रन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य गणमान्य उपस्थित

0: उपस्थित थे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO के बाद इन दस्तावेजों को इसीनेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिसंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग लेंगे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुर्नूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तरजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तम्मा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। स्क्वॉश में जोशना चिनप्पा और वन संथल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Election Commission today said that booth-level officers or BLOs will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision or SIR to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECI Net platform. The decision was taken during a meeting held by the Election Commission in New Delhi. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by the Electoral Registration Officer. It said that hearings will be conducted only in exceptional circumstances, preferably through online mode. The Commission also said that if a hearing is required, the elector may authorize any adult member of their family to appear on their behalf. SIR has already been completed in 20 states and UTs, including Bihar and West Bengal. The Commission reiterated that the order for the SIR issued for all the states and UTs with the unanimous approval of the Commission. The Commission said that any person whose name has been left out during SIR and wants to include their name can apply to the concerned Electoral Registration Officer. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today launched the IIT Madras Unicorn Venture Fund at the

0: स्पष्ट थी कि एक नारी की प्रगति से सिर्फ एक नारी का विकास नहीं होता, बल्कि एक परिवार, एक समाज और एक राष्ट्र की तरक्की की शक्ति प्रदान होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों पर आधारित आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के आज के एपिसोड की थीम है नारी से नारायणी। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी जी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तकरीबन 25 साल पहले गुजरात में लड़कियों की शिक्षा को लेकर स्थिति बेहतर नहीं थी और जो बच्चियां पढ़ने जाती भी थीं, स्कूल ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा थे। तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने वहां के आईएएस अधिकारियों के साथ गांव के सरपंच मुखिया को लेकर गर्मी की चिलचिलाती धूप में गाँव तक गए और परिवारों को बोला कि आप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजिए, और स्कूल में उनका स्वागत किया गया, उनको उपहार दिए गए, उन्हें ऐसा फील कराया गया कि आप एक विशेष जगह पर आई हैं। और फिर आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 99% ड्रॉपआउट रेट कम हुए। गुजरात में ड्रॉपआउट रेट कम करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम था शाला प्रवेश उत्सव। क्या थी योजना, किस सोच के साथ शुरू हुई और क्या रहे इसके परिणाम, आइए सुनते हैं इस विशेष रिपोर्ट में।
2: गुजरात में शिक्षा को घर घर तक पहुँचाने और बच्चों का स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करने के लिए हर साल शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया जाता है। शाला प्रवेशोत्सव की शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। इसके तहत राज्य के मंत्री, अधिकारी और स्थानीय प्रशासन गांवों और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचते हैं और बच्चों को स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस पहल के साथ बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कन्या केलवड़ी कार्यक्रम भी चलाया जाता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सिर्फ बच्चों का नाम स्कूल में दर्ज कराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे नियमित रूप से शिक्षा से जुड़े रहें। खास तौर पर पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों और स्कूल से बाहर रह गए बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान जन प्रतिनिधि और अधिकारी बच्चों और उनके परिवारों से सीधे संवाद करते हैं। इससे अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने और स्कूल में दाखिले को लेकर उनकी झिझक दूर करने की कोशिश की जाती है। गुजरात के समग्र शिक्षा पोर्टल के अनुसार राज्य में सरकारी और निजी स्कूलों की बड़ी संख्या मौजूद है। अगस्त 2026 तक राज्य में 40,554 सरकारी और 13,905 निजी स्कूल दर्ज हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में करीब 61,15,000 लड़के और 52,35,000 लड़कियां दर्ज हैं। शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। गुजरात के वर्ष 2024-25 के समग्र शिक्षा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांग बच्चों की पहचान और उनके नामांकन के लिए घर घर सर्वे किया गया। इसी वर्ष 68,629 दिव्यांग बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप कक्षाओं में नामांकन कराया गया। इनमें 2,770 बच्चे बाल वाटिका और 4,201 बच्चे पहली कक्षा में दाखिल हुए। राष्ट्रीय स्तर पर भी स्कूलों में नामांकन और बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने को प्राथमिकता दी जा रही है। शिक्षा मंत्रालय की समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में सार्वभौमिक पहुंच, बुनियादी ढांचे, मुफ्त पाठ्य पुस्तकों और पात्र बच्चों के लिए मुफ्त यूनिफॉर्म जैसी सुविधाओं के लिए सहायता दी जाती है। इसमें नामांकन और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने के लिए विशेष अभियान भी शामिल है। यानी शाला प्रवेशोत्सव सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल की दहलीज तक लाने और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की एक सामुदायिक कोशिश है, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए स्कूल का पहला कदम उसके भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम हो सकता है।
0: यही योजना आगे चलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में तब्दील हुई और हमने देखा कि किस तरीके से लैंगिक अनुपात भी भारत में बेहतर होता नजर आया। सुशीला जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं, कैसे देखती हैं इस पूरे सफर को आप?
1: आप जो कह रहे हैं कि जो गुजरात में जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए जिसकी वजह से बहुत फर्क आया, ये अगर हम एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए आधुनिक भारत का, तो दो चीज कहूंगी मैं और फिर हमारी जो विशेष टॉपिक है उसके कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूंगी कि आधुनिक भारत जो हम पढ़ाते हैं, जो पढ़ते हैं, ये इसकी शुरुआत राजा राममोहन रॉय से हुआ था, जब उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थॉट कहा जाता है, इंडियन रेनेसां, उस टाइम से ये शुरुआत हुई थी कि नारी की जो स्थिति है जब तक उसमें सुधार नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उनके बाद जो राणा डे, फिर विवेकानंद और ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इतने सारे महारथी थे जो उन्होंने इस पे बहुत गहराई से सोच के कर

0: दम उठा है। जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुई थी, गांधी जी का जो योगदान था वो सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने अहिंसा का जो मार्ग चुना स्वतंत्रता के लिए, उससे जो है बहुत सारे परिवारों में एक तरह का कॉन्फिडेंस था कि अगर हमारी बेटियां, हमारी जो माएं हैं, अगर पब्लिक स्पेस जो कहते हैं वहां पे जाएंगे, गांधी जी हैं तो सुरक्षित है। और महिलाओं का बहुत योगदान था, और गांधी जी खुद कहते हैं उनकी माँ और साउथ अफ्रीका के जो नारी शक्ति थी उसके वजह से उनको वो समझ आई क्वालिटीज लाइक टॉलरेंस, किस तरह जब एंगर और जो गुस्सा कैसे एक नारी जो है बिना रिएक्ट करे उसको कैसे अब्सॉर्ब करके उसको कैसे चेंज करती है। तो ये सारे उन्होंने कहा कैसे उन्होंने अपने सत्याग्रह पे इनकॉर्पोरेट किया। जब संविधान बनी, भारत ऐसा एक संविधान है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नारी को भी एक समान हक दिया गया था, हम लोगों को लड़ाई ज्यादा नहीं करना पड़ा राइट टू वोट के लिए, सबको समान रूप से मिला। और खासकर एक चीज बताना चाहूंगी, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया में उनको इक्वल पे इक्वल वर्क, जो हमें और जगह और कंट्रीज में भी नहीं मिलता। अभी भी आप अगर यूएन रिपोर्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इतना फर्क है एक पुरुष की जो पे स्केल और एक औरत। ये हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। फिर मैं ये कहना चाहूंगी 1970 में जब यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमन का जो घोषणा किया, तब 1969 में एक कमेटी की स्थापना करने की कोशिश हुई थी जो वीना मजूमदार उन्होंने हेड करा, और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार करी थी टुवर्ड्स इक्वालिटी। उसके लिए जो गाइडलाइंस दिए गए थे वो यही था कि हम नारी को कैसे उनकी जो स्थिति है उसको कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि नारी पीड़ित ही नहीं है पर उनके वजह से इतने सारे लोग भी पीड़ित है, उसमें पुरुष भी माने जाते हैं और अल्पसंख्यक और जो कमजोर वर्ग। तो ये जो ढांचा है जो बिल्कुल एक कहते हैं ना पेट्रियोकल, जो बड़ा ओप्रेसिव एक्सप्लॉयटेटिव, इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। जैसे आपने बताया नारी के लिए शिक्षा, नारी के लिए एक आर्थिक सेफ्टी नेट जो बोलते हैं, ताकि वो जो कमा सकती है वो अपने हाथ में रखे डिसाइड कर सकती है। तो इस लेगेसी को एक बहुत अच्छा दिशा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर एंड देन एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये उनका एक विजन रहा है शुरू से कि हमें जो नया भारत का निर्माण करना है उसमें महिलाओं की इक्वल भागीदारी देना है। उन्होंने जब आई थिंक 2014 या 15 मुझे याद नहीं है, रेड फोर्ट से जब उन्होंने एक आज़ादी के पर्व में जो प्राइम मिनिस्टर की जो भाषण होती है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम हर वक्त कहते हैं कि नारी की शिक्षा, नारी की स्थिति में कैसे फ़र्क लाएं, ये तो हम ध्यान देते हैं पर हम अपने बेटों के बारे में सोचते नहीं हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो परवरिश है, उनको कैसे सिखाया जाए कि अपने घर में जो बहन है, माँ है, बाद में बीवी आएंगी, उनके प्रति कैसे समान रूप से उनको हक, उनकी डिग्निटी, उनकी रिस्पेक्ट, ये जो सोच था ना ये की थी। क्योंकि हम हर वक्त फोकस करते हैं विमेन के ऊपर और मेन जो है आदमी को सोचते हैं कि जैसे वो अपने आप सुधर जाएगा। तभी तो कहते हैं एक नारी को शिक्षा दो पूरा परिवार शिक्षित होती है, वो सही है पर सोच में जो फर्क लाना चाहिए वो बहुत जरूरी है। और मैं ये मानती हूँ मोदी जी ने जब ये बात उठाई और फिर उनके जो जितने भी कार्यक्रम हैं और जितनी भी योजनाएं हैं ये इसी पे जो एक तरह का केंद्र बिंदु कह सकते हैं ना, ये मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है उनके योगदान में।
1: थोड़ा सफर आगे बढ़ाते हैं आदि जी, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया और तब हरियाणा जैसे राज्यों की स्थिति अच्छी नहीं थी, वहां बेटियों को लेकर एक अलग सोच थी। अगर उस समय के लैंगिक अनुपात की बात करें तो 918 के आसपास पूरे राष्ट्रीय लैंगिक अनुपात था, जो बाद में बढ़कर इस समय 937 पर पहुंच गया है, जो ये बताता है कि बेटियों को लेकर पिछले 25 वर्षों में उनकी दूरदर्शिता से सोच बदली है। बतौर पत्रकार जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आप महसूस करती हैं?
2: देखिए, जो सबसे बड़ा बदलाव नजर आता है ना सिर्फ पत्रकार के तौर पर बट एक जनरल आम सिटीजन के तौर पर, वो ये आता है कि जो अप्रोच है महिलाओं को लेकर, कि जैसे पहले था कि एक वेलफेयरिस्ट अप्रोच थी कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, सशक्तिकरण का जो प्रकरण है वो हर सरकार के टाइम चला है, सबने कोशिश की है। इस सरकार में जो बदलाव देखने को मिला वो ये था कि एक महिला लेड डेवलपमेंट की तरफ पॉलिटिकल सोच का बदलाव, जैसा कि अभी सुशीला जी ने कहा कि एक पॉलिटिकल लीडर का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, समाज को कैसे बदला जा सकता है, वो सिंबोलिज्म से बदला जा सकता है। आप किस तरीके का मैसेज समाज को दे रहे हैं महिलाओं के प्रति, आप क्या सोच रख रहे हैं, गवर्नेंस का पूरा मॉडल

0: जो है वो वेमेन वेलफेयर से बदल कर वेमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और वो एक कॉन्टिन्यूम है, वो आप पॉलिसी में भी देख सकते हैं। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र किया, वो एक बहुत मेजरेबल आउटकम हमें अब नजर आने लगा है। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो स्टैटिस्टिक्स अभी आया है और हमने देखा कि जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है वो पहली बार 1000 से ऊपर भी चला गया, 1020 भी हो गया, 1000 पुरुषों के प्रति 1020 महिलाएं हो गई। तो इन इंडिकेटर्स में ये जो माइंडसेट अप्रोच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से बदलने की कोशिश की गई है, समाज को ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि जो महिलाएं हैं वो ड्राइवर्स हैं इकोनॉमी की, वो ड्राइवर्स हैं ग्रोथ की, वो विकसित भारत की यात्रा में एक म्यूट स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, वो इक्वल पार्टिसिपेंट्स हैं। उसी तरफ हर स्कीम अगर आप उठा के देखें सरकार की, महिलाओं के प्रति जो भी स्कीम्स लागू की गई हैं उनका मोटा मोटा पर्पस ये है कि महिला को, मतलब ऐसा नहीं कि हमें उनको डोल देना है कि हमने ये दे दिया हमने वो दे दिया कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, बल्कि उनको डिसीजन मेकिंग टेबल पर इक्वल भागीदारी देने का एक मकसद है। वही रिफ्लेक्ट हो रहा है सेक्स रेशो में, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है अगर आप स्कूली स्तर पर देखें, प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट काफी कम हो गया है, जो नेशनल लेवल पर अगर आप ड्रॉप आउट रेट देखें इस वक्त शायद 1.9% है, जो काफी एनकरेजिंग है। इट्स नॉट इनफ, वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए, लेकिन काफी हद तक सुधार हुआ है। ये जो आपने पॉलिसीज का जिक्र किया, जैसे आपने कहा शाला प्रवेशोत्सव गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने अपने चीफ मिनिस्टर काल में लागू की थी, मेरे ख्याल से 2003 में,
1: बिल्कुल,
0: और वो अब बढ़ बढ़कर उसका रिजल्ट ये हुआ है कि एक आम तौर पे पूरा का पूरा समाज ये मानने लगा है, गरीब समाज भी, कि लड़कियों को स्कूल भेजना एक रूटीन है, यू नो एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्म है। जो पहले एक्सेप्शन था वो अब नॉर्म है, ये बदलाव है।
2: 2015 से शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने अपने 11 वर्षों के अब तक के सफर में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। आइए सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट।
3: किसी भी समाज की प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ बेटियों को कितने अवसर मिलते हैं। बेटी का जन्म, उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता, ये केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास से जुड़े सवाल हैं। इसी सोच के साथ 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य था लड़कियों के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाना, लिंग आधारित भ्रूण चयन को रोकना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। समय के साथ यह अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम न रहकर बेटियों के अधिकार और उनके भविष्य को लेकर जागरूकता का एक व्यापक प्रयास बना। इसमें परिवार, स्कूल, स्थानीय समुदाय और अलग अलग सरकारी विभागों की भागीदारी पर जोर दिया गया। अगर आंकड़ों की बात करें तो माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 के करीब 75% से बढ़कर 2025-26 में 83.4% हो गया। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बेटी का जन्म हो रहा है या नहीं, सवाल यह भी है कि क्या उसे पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने फैसले खुद लेने का अवसर मिल रहा है। अब बात गुजरात की। गुजरात में बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना इसका एक उदाहरण है। जनवरी 2026 तक गुजरात डाक परिमंडल में बालिकाओं के नाम 16,35,000 से ज्यादा सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके थे। इन खातों में 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा थी। उत्तर गुजरात में भी इस दिशा में विशेष अभियान चलाया गया। 2024 में क्षेत्र के 487 गांवों को संपूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम घोषित किया गया। इन गांवों में पात्र बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खोलने पर विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन किसी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने का मतलब सिर्फ उसके नाम पर बचत खाता खोलना नहीं है, उसे स्कूल तक पहुंचाना, पढ़ाई जारी रखने के लिए परिवार को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह जैसी चुनौतियों से बचाना और आगे चलकर कौशल तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। गुजरात में कन्या केलवड़ी और शाला प्रवेशोत्सव जैसे अभियानों ने भी बालिकाओं को स्कूल से जोड़ने और शिक्षा के महत्व को घर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया है। इन पहलों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की व्यापक सोच के साथ देखा जा सकता है, जहां बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता तक हर चरण को महत्व दिया जाता है। क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है तो उसका असर सिर्फ उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं रहता। शिक्षा उसे अपने अधिकार समझने, बेहतर फैसले लेने और आर्थिक रूप से

0: मजबूत बनने का रास्ता देती है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि बेटी को बचाना है और पढ़ाना है, संदेश यह भी है कि बेटी को अपने सपने देखने और उन्हें पूरा करने का समान अवसर देना है। और यही सोच आगे बढ़कर महिला नेतृत्व वाले विकास की मजबूत नींव तैयार करती है।
1: सुशीला जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शिक्षा से हम आगे बढ़ें तो एक योजना जिसने बहुत ज्यादा ध्यान खींचा वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आप सभी ने घरों में खाने बनाए और हमने अपने बचपन में देखा कि हमारी माँ लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाया करती थी, धुआं बहुत निकलता था, आंखों से आंसू निकलने लगते थे। इस सोच को और इस समस्या को दूर करने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई और आज तकरीबन भारत में 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इस योजना से रसोई गैस उपलब्ध कराई गई है, जिससे उनका सेहत बेहतर हुआ है, सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर बेहतरी देखने को मिली है और जिसे कहते हैं कि महिलाओं का समग्र विकास हुआ है। कितना बड़ा गेम चेंजर मानती हैं आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को?
2: देखिए, जो आपने कहा ना, हम सब ने देखा है अपनी माओं को, मेरे तो अपनी माँ को नहीं देखा, क्यों कहते हैं ना इंडिया वर्सेस भारत
1: जी।
2: शुरू से था जो रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल एरियाज में ये सब जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो जरूर था, अभी भी शायद होगा
1: जी।
2: पर परसेंटेज कम है, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान है एक तो बहुत विशाल देश है, समस्याएं बहुत थी, 300 साल का जो राज था अंग्रेजों सरकार का, जो कलोनियलिज्म, आप जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कितना कुछ लूटा गया इस देश से, तो उस सबको जो बदलने के लिए बहुत टाइम भी लगता है और प्रयत्न भी होते हैं। और हिंदुस्तान में ना 10 सेंचुरी जो है 100,000 साल एक साथ जीता है, हमें ये भी मान के चलना पड़ता है। तो शहरी इलाकों में खासकर गैस चूल्हा ही देखा है हमने, मेरे परिवार, मेरे मित्रों के परिवार, हम लोगों ने। हाँ, टाइम लाइक जब युद्ध हुआ, बांग्लादेश युद्ध हुआ, तब हम सब ने, जैसे आप कह रहे हो, चूल्हा में खाना बना के देखा हुआ है, बट रूरल इंडिया में ये नहीं था। जो फर्क जो आया है उसके वजह से वो डेफिनेटली एक गेम चेंजर है। और इंक्रीजिंग एक और जो कॉन्शियसनेस देश में ही नहीं पूरा विश्व में, एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, कि ये जो कार्बन एमिशन है, ये चूल्हा जलाने की वजह से जो कार्बन एमिशन है उसका भी एक टैकलिंग दैट प्रॉब्लम। सो यस, जो खाना बनाते हैं घरों में उसके वजह से उनका जो हेल्थ है, सुविधा है। और देखिए, घर का खाना हर वक्त कहा जाता है इट्स अ वेरी हेल्थी वन, सो द एम्फेसिस कि घर में खाना बना के टाइम जो है उसको एक अच्छी तरह यूज करिए। टाइम जो है 24 घंटा हर एक के पास होता है, उस टाइम का हम कैसे उपयोग करें? अगर चूल्हा में ही सारा टाइम निकल जाता है, कितनी सारी कहानियां पहले पढ़ते थे, एक औरत का जो टाइम है सिर्फ चूल्हा चौका में गुजरता है, अब तो वो टाइम भी बचत होती है और उस टाइम की जो सेविंग की वजह से लोग बहुत कुछ जो सीख सकते हैं। बहुत बार मैं देखती हूँ कि रूरल इंडिया का जो एक साइड है जो सोशल मीडिया में नजर आती है कि इनके पास टाइम की वजह से ये कितने अपने जो हुनर है, अपनी जो कला है, वो अपना सोशल मीडिया में रील्स बना के फैलाती हैं। तो ये जो टाइम की बचत से ये सब जो कर पाते हैं, ये भी तो एक बहुत गेम चेंजर है कि खाना भी बन जाता है सुविधा के अनुसार, कार्बन एमिशन इन अ वे लेस, एंड एट द सेम टाइम इतना टाइम मिलता है फॉर देम टू लिव अ गुड लाइफ। बिकॉज आधुनिक समाज का जो एक बहुत खास बात है, हमारे पास जो है सुविधा है जो जिससे हम एक अच्छा लाइफ गुजार सकते हैं, पर उस सुविधा को सबके लिए देना ये मोर चैलेंजिंग है। आई थिंक ये जो प्रयास रहा है इस सरकार का कि इतने सारे लोगों को जितने मैक्सिमम लोगों को दे सकते हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा, आई वुड से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। इट्स नॉट कन्फाइंड टू स्मॉल सेगमेंट्स, द प्रिविलेज्ड वन, इट इज फॉर एज लार्ज अ सेगमेंट्स। तो इसमें आप नॉट वेरी वेल ऑफ उनको भी जोड़ देते हैं, ये इन अ वे इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट।
1: जी हाँ, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दीदी जी, एक और योजना जिसने महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। जब भी हम बात स्टार्टअप की करते हैं, जब भी बात हम कहते हैं कि आत्मनिर्भरता की, पुरुषों का जिक्र होता है, लेकिन लखपति दीदी जैसी जो योजनाएं हैं उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं को प्रेरित किया कि आप भी हर महीने 1,00,000 रुपए तक कमा सकती हैं और इनका आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा भी कि महिलाओं को किसी दूसरे पर निर्भर रहने की अब इस विकसित भारत की यात्रा में जरूरत नहीं है। लखपति दीदी को कैसे देखती हैं?
3: देखिए, लखपति दीदी प्रोग्राम जो है वो एक बहुत सारे बाकी प्रोग्राम्स के नींव पर रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर देखेंगे जो जनधन अकाउंट्स खोले गए पहले, हम उसको जैम ट्रिनिटी के नाम से जानते हैं, जनधन अकाउंट्स, आधार आइडेंटिफिकेशन और मोबाइल एक्सेस, ये तीन चीजें जब महिलाओं के हाथ में दी गई, उसका पर्पस ये था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का, वो

होता है कि आपको बैंकिंग और क्रेडिट का एक्सेस मिलता है कि नहीं। सबसे पहले हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी के माध्यम से बहुत सारे अकाउंट्स खोले गए। हम सब जानते हैं कि आज की डेट में करीब 60 करोड़ अकाउंट्स खोले जा चुके हैं और जो बैंकिंग की सुविधा है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। और इन 60 करोड़ में से अगर आंकड़े मैं सही कह रही हूँ, मेरी याददाश्त यही बताती है कि करीब 50% से ज्यादा महिलाओं के नाम पे हैं। आपने सबसे पहले उनके अकाउंट्स खोल दिए, उसके बाद आपने मुद्रा योजना लागू की। मुद्रा योजना के माध्यम से आपने इजी क्रेडिट महिलाओं को देना शुरू किया, उनके अकाउंट्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, उसमें पैसे आने लगे, महिलाओं को क्रेडिट मिलने लगा छोटे छोटे कामों के लिए। तो महिलाएं अपनी अपनी जगह कोई रेडी लगा सकती है, कोई अपनी दुकान चला सकती है, कोई खाना बना सकती है, टिफिन की सर्विस शुरू कर सकती है, छोटा छोटा क्रेडिट उनके हाथ में।

0: सकती है, टिफिन की सर्विस शुरू कर सकती है, छोटा छोटा क्रेडिट उनके हाथ में आने लगा। सशक्तिकरण का ये जो सिलसिला है ये वहां से शुरू हुआ। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज ये है कि जब महिलाएं एक लेवल पर आकर सेटल हो गई तो आप उनको और फिलिप कैसे देंगे? उस फिलिप के लिए अब ये लखपति दीदी योजना का इम्पोर्टेंस है। ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि ये संगठित तरीके से महिलाओं को सशक्त करने का एक माध्यम है कि एक साल में हर महिला 1,00,000 रुपए कमाने का सामर्थ्य रखे। उसके लिए क्या किया गया है? बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स इवॉल्व किए गए हैं। पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक पूरा नेशनल नेटवर्क क्रिएट हुआ है, एक पूरा मूवमेंट चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तेजी से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बढ़ रहे हैं हमारे देश में, ऑर्गेनाइज तरीके से महिलाएं एक दूसरे की मदद कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, आज की डेट में 95,00,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भारत में हैं और इन 95,00,000 ग्रुप्स में करीब 10 करोड़ महिलाएं मेंबर्स हैं। तो आप संगठित तरीके से SHGs के माध्यम से जुड़ चुके हैं। इन SHGs को अब लखपति दीदी प्रोग्राम में क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं? फॉर एग्जांपल आप नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम ले लीजिए। वो प्रोग्राम क्या है? उस प्रोग्राम का जो फाउंडेशन है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप ही है
1: जी।
0: कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 2023 से 2026 तक की ये स्कीम है जो बढ़ाई जाएगी। आई एम श्योर 1,200 करोड़ इसका आउटले रखा गया। 15,000 SHGs को आप ड्रोन सप्लाई करेंगे। ड्रोन किस लिए सप्लाई करेंगे? कि आप उनको ट्रेनिंग देंगे SHGs की महिलाओं को, कुछ चोजन महिलाओं को जिनका उस चीज में इंटरेस्ट होगा। हर कोई महिला का इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो ड्रोन के माध्यम से आप उनको ये सिखाएंगे कि फार्मिंग की प्रैक्टिसेस, आप एग्रीकल्चरल फार्मलैंड्स पर पेस्टिसाइड्स कैसे स्प्रे कर सकते हैं, आप सीड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से। तो ये एक माध्यम बन जाता है सशक्तिकरण का और इससे पैसा बनते बनते फिर वो लखपति दीदी के प्रोग्राम में ऐड होता रहता है। जैसे पहले लखपति दीदी प्रोग्राम के तहत मुझे लगता है 3 करोड़ महिलाओं को रीच करने का टारगेट था, जो अब बढ़ा के शायद 6 करोड़ या 5 करोड़ कर दिया गया है। बहुत एम्बिशियस टारगेट है पर पुराने प्रोग्राम्स ने दिखाया है कि ये अचीवेबल है।
1: जी हाँ, अदिति जी, एक और योजना की बड़ी चर्चा रही वो नीतिगत सुधार देखने को हमें मिला। मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत 3 तलाक का जो सुधार हुआ उसमें एक बहुत ही सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला। आंकड़े बताते हैं कि 80% तक तलाक की दर कम हो गई। एक सामाजिक परिवर्तन को लेकर जो ये निर्णय लिया गया और प्रधानमंत्री की जो इसके पीछे की सोच थी, जमीनी स्तर पर कितना बदलाव आपको नजर आया?
0: देखिए, मुस्लिम महिलाओं की जो आम तौर की जिंदगी में इस लॉ का बहुत बड़ा महत्व है और ये बहुत ज्यादा अगर ओपनली वो बोल भी नहीं पाती होंगी तो भी उनकी जिंदगी में जो इसका असर है वो आई एम श्योर हर लेवल पर नजर आता होगा। क्योंकि इस लॉ से ये हुआ है कि एक तो डिग्निटी मैरिज में बरकरार हुई है, एक एश्योरेंस मिला है मुस्लिम महिला को कि उसके साथ जिसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन होता था कुछ प्रैक्टिसेस की वजह से, और ऐसा भी नहीं है कि इस्लाम में ये प्रैक्टिसेस मान्य हैं और बहुत सारी डिस्टॉर्शंस रिलीजन के माध्यम से आ जाती हैं आमतौर के डिबेट्स में, जिसकी वजह से ये एक आम चर्चा में हो गया था कि ये चलता है। उस चलता है एटीट्यूड को तोड़ने के लिए जो ये 3 तलाक के कानून को लाया गया, क्रिमिनलाइज किया गया इस प्रैक्टिस को। हम सबको पता है कि शाह बानो का केस कितना फेमस हुआ था और फिर उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की एलमनी का जो डिसीजन, इतने जंदोजहद के बाद शाह बानो ने एक एलमनी का डिसीजन जीता था सुप्रीम कोर्ट से और फिर उस वक्त की सरकार ने उसको ओवरटर्न कर दिया था लॉ लाकर। तो वो एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस, बहुत लोगों ने ऐसा माना कि 3 तलाक के कानून से करेक्ट किया गया क्योंकि आपने फाइनली ये बोला कि आप इस तरीके का बिहेवियर मुस्लिम महिला तो क्या किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि कुछ रिलीजन स्पेसिफिक इशू है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट हमारे देश में चल रही है, अगर एक कॉमन पर्सनल लॉ पूरी कंट्री के लिए होगा तो ये जो कुरीतियां हैं किसी भी समाज में हो वो उनसे लड़ने की ताकत महिलाओं को मिलेगी। तो जो सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त कहा था और ये उम्मीद की थी कि आने वाली सरकारें इनैक्ट करेंगी ऐसा एक लॉ, तो इसी उम्मीद से की थी कि हम आने वाली सरकारों पे छोड़ते हैं कि उस वक्त की सामाजिक स्थिति क्या होगी, उस वक्त की राजनीतिक इम्पेरेटिव्स क्या होंगे, उन सबको ध्यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने की थी और कहा था कि आने वाली सरकारें इस चीज को देखेंगी। तो ये जो मुस्लिम महिला की आपने बात की, ये एक तरीके से पर्सनल लॉ की ही रिफॉर्म की तरफ कवायद है कि आप किसी भी महिला को, वो किसी भी रिलीजन में हो, इस

0: तरीके से तो ट्रीट नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो फिर गवर्नमेंट को अपनी साख दिखानी होगी। गवर्नमेंट गवर्नमेंट इसीलिए है कि उसमें एक पावर है चीजों को बदलने की, और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है जिससे मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करने का एक मौका मिला है।
1: सुशीला जी, चर्चा को अगर थोड़ी आगे बढ़ाएं तो घर की चार दीवारी में तो महिलाएं काफी समय से सक्रिय रहीं, लेकिन नेतृत्व के मेज तक उनको लाना अपने आप में एक बड़ी बात थी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में लाना। हमने देखा कि जब भारत में G20 की अध्यक्षता की भारत में और नई दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ वहां पर महिला नेतृत्व को प्रमुखता दी गई। साथ ही साथ जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने देखा कि महिलाओं ने किस तरह फाइटर जेट के माध्यम से दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने में अहम भूमिका निभाई। युद्ध के मैदान से देखें या अंतरिक्ष तक देखें या फिर खेल के मैदान में देखें, महिलाएं न सिर्फ आगे आ रही हैं बल्कि निर्णायक स्थिति में भी पहुंच रही हैं। ये परिवर्तन जो पिछले 25 वर्षों में हुए हैं और इसके पीछे नरेंद्र मोदी की एक अहम सोच रही है, कैसे देखती हैं आप?
2: मैं इसको अगर एक रेफरेंस दूंगी, 1968 में गुणल मुरल की एक किताब आई थी, एशियन ड्रामा, उसमें मुरल साहब लिखते हैं, वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, कहते हैं कि पूरा साउथ एशिया का एक सर्वे था, हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि इट इज़ अ कंट्री वेयर इट हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वीमेन इन डिसीशन मेकिंग कैपेसिटी। मिड 60s बीच में कहीं गायब हो गई, तो शुरुआत जो था कहीं जो गायब हो गई थी उसको पिकअप किया गया, और कि वीमेन शुड बी फाउंड इन इम्पॉर्टेंट डिसीशन मेकिंग बॉडीज इन प्लेसेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों पीछे रह गया उसकी एनालिसिस करिए और उसको रेक्टिफाई कैसे करना चाहिए। और खासकर हम जब नारीवाद पढ़ाते हैं हर वक्त कहते हैं कि नारीवाद जो है ना एक मिडिल क्लास मूवमेंट रह गया, ये सिमोन द बोअर का क्रिटिसिज्म है, सिर्फ मध्यम वर्ग के जो विमेन है उन्हीं के बारे में चर्चा है, उन्हीं की कंसर्न्स है, इसीलिए आम महिला जो है उसके साथ जुड़ती नहीं है, क्योंकि विमेन एज अ कैटेगरी वो जो है ना ऐसा है ही नहीं। उसमें जेंडर आप देखोगे इम्पॉर्टेंट है, पर उसके साथ आपको क्लास, कास्ट, रिलीजन, रीजन ये सब भी देख के चलना पड़ता है। मेरा जो कहने का मतलब है कि आपकी जो प्रोग्राम्स उसकी जो विजन ऐसी होनी चाहिए कि आप जितना ये प्रोग्राम्स एक शिक्षित हाईली वेल प्लेस्ड वीमेन अपील करती हैं, उसी तरह एक ऑर्डिनरी वीमेन को भी जब तक आप उस तरह का एक ब्रॉड स्वीप नहीं रखोगे, कैच ऑल जो बोलते हैं, तब तक जो है ना सारे वीमेन जुड़ेंगे नहीं। जो मध्यम वर्ग की वीमेन के जो कंसर्न, स्त्री की जो कंसर्न है और आपके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है उसके जो कंसर्न है वो बहुत हटके होते हैं, कहने को दोनों महिला हैं, यही मैं कहना चाह रही हूँ, पर उनके जो कंसर्न है बहुत, उनकी जो फिक्र होती है वो बहुत अलग होती है। आपका जो लीडरशिप क्वालिटी ये है कि आप इन दोनों को ब्रिज कैसे करें, अगेन ये जो एम्फोसिस है ऑर्डिनरी लोगों को कैसे आप आगे बढ़ाएं, उनकी जो प्रॉब्लम्स उनकी जो समस्याएं उनको आप कैसे टैकल करें, और इससे जो है बाकी लोग भी जो फायदा उठा सकते हैं, ये जो बॉटम अप टू टॉप जा रहा है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप जो कह रहे हो ना कि इतने सारे महिलाएं देखे, और ये ऑर्डिनरी महिलाएं हैं, ये दे आर नॉट फ्रॉम वेरी यू नो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, दीज आर ऑर्डिनरी पीपल हुम वी कैन सी इन द स्ट्रीट्स, right? I mean, they've come up from humble backgrounds but made it to the top because they've got the opportunities. This is what is the achievement of a good society, a equal society.
1: Aditi ji, to mahila netritv ki jo baat Narendra Modi ji kehte hain ki महिलाओं को अब नेतृत्व क्षमता में आगे आना चाहिए, बतौर पत्रकार आप किस तरीके से बदलाव महसूस करती हैं?
0: देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बदलाव का एक मैसेजिंग है वो यही है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है किसी भी क्लास और ऑफ सिटीजन्स के लिए, चाहे वो पुरुष हो या कोई भी हो। तो अब ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से 33% आरक्षण की बात हो रही है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, ये एक मीनिंगफुल स्टेप फॉरवर्ड है महिलाओं को लीडरशिप रोल में एक इम्पॉर्टेंट स्थान देने के लिए। कहने में आसान लगता है लेकिन डिसीजन मेकिंग में जब एक्चुअल रोल देने की बात आती है वो बहुत अलग और एक बहुत डिफरेंट डिबेट हो जाती है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर ये कहता है कि हम इक्वल पार्टिसिपेशन महिलाओं को देना चाहते हैं, जैसे कि आपको याद होगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जब पहली बार आरक्षण आया था तो ऐसे ही शुरू हुआ था, और आज की डेट में आप देखिए कितनी सारी महिला नेत्रियां हमारी लोकल बॉडीज में हैं, अर्बन लोकल बॉडीज में हैं, पंचायत्स में हैं। तो लीडरशिप डेवलप होने में भी वक्त लगता है। आप आज लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देंगे तो कल वो उभर के आएंगी, ये लॉजिक देना कि महिलाएं कहाँ से मिलेंगी, उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टीज कहाँ से ढूंढेंगी, ये बहुत लेम लॉजिक है, और ये हम एक्सपेक्ट

0: भी करते हैं कि ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलेंगी जब ये लॉ पास होगा, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना अपने आप में महिलाओं की सशक्तिकरण का एक सिग्नल था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महिलाओं के पतियों को वहाँ मारा गया था पहलगाम में। दूसरी बात, बहुत देर तक सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को देश के बिहाफ पे ऑपरेशन सिंदूर की अपडेट्स देने के लिए जो बुलाया गया, जो स्टेज दिया गया, वो महिलाओं के प्रति एक विश्वास का सिग्नल था, एक बहुत ही सेल्फ एश्योर्ड गवर्नमेंट का सिग्नल था कि हम तैयार हैं महिलाओं की नेतृत्व को एक्सेप्ट और स्वीकार करने के लिए।
1: जी हाँ, पिछले 25 वर्षों में अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ बदला, लेकिन महिलाओं के संदर्भ में अगर कहें तो महिलाओं को जो उन्होंने एक बदलाव दिया वो था उनके अंदर का आत्मविश्वास कि आप जो करना चाहती हैं आप कर सकती हैं और देश में उसके लिए माहौल है। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, अगर आप खेल के मैदान में भारत का तिरंगा लहराना चाहती हैं, आप फाइटर जेट उड़ाना चाहती हैं या फिर आप कुछ और भी करना चाहती हैं, तो आपके लिए आपकी जो सीमा है वो आकाश ही है। और इन 25 वर्षों में हमने बहुत सारे बदलाव देखे और वो बदलाव भारत को एक नया भारत और विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे लेकर जा रहा है। प्रोफेसर सुशीला जी और अदिति जी दोनों कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे दर्शकों और श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 10वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा नारी से नारायणी तक। इसमें भाग ले रही थीं शिक्षाविद प्रोफेसर सुशीला रामास्वामी और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: நேரம் 7:45, ஆகாஷவாணி 100.1 MHz FM கோல்டு அலைவரிசை.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक के बाद लिया गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं बुलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। पार्टी ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केरलम कांग्रेस ने माना है कि SIR उनकी जीत का एक कारण था, क्योंकि इस प्रक्रिया से उन फर्जी मतदाताओं के नाम हटा दिए गए जिन्होंने अवैध रूप से पंजीकरण कराया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10

0: बचत से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स के बढ़ते योगदान का जिक्र किया और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों को सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि तक पहुंचाने का आह्वान किया। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ आज कच्छ जिले के दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण में 150 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले ई मेथेनॉल संयंत्र की आधारशिला रखी। श्री सोनोवाल ने कहा कि इस संयंत्र के शुरू होने से देश भर में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि 5000 से अधिक वर्षों से समुद्री क्षेत्र में गुजरात की ऐतिहासिक भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। उधर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The Election Commission today said that booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision, SIR, to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECI Net platform. The decision was taken during a meeting held by Election Commission in New Delhi. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by Electoral Registration Officer. It said that hearings will be conducted only in exceptional circumstances, preferably through online mode. The BJP has condemned the allegations levelled by opposition parties, particularly the Congress, against the Election Commission on SIR as extremely unfortunate. Addressing a press conference in New Delhi today, senior BJP leader Ravi Shankar Prasad said, "The Election Commission has issued a press note stating that all decisions related to the Special Intensive Revision SIR were taken with the consent of the Chief Election Commissioner and both election commissioners." Mr. Prasad welcomed the statement issued by the Election Commission. Union Minister for Home Affairs and Cooperation Amit Shah inaugurated several developmental initiatives under the auspices of the National Cooperative Consumers Federation of India, NCCF, at Kundara near Kollam in Kerala, aimed at ensuring women's participation in the cooperative sector and strengthening women empowerment. The minister inaugurated the commercial distribution of quality Bharat Atta and Bharat Rice at subsidized rates, distributed free mini seed kits to women farmers in connection with the International Year of Women Farmer, and launched the sale of onions at subsidized price. Chief Justice of India, Justice Surya Kant, today inaugurated the country's first Victim Rights Centre in Patna. The first of its kind Victim Rights Centre in the country is established on the premises of the Bihar State Legal Services

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ஸ்வயம் ஹி கட்படை பாரதிய சேனா.
1: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சே சமாச்சார் சந்தியா கே சாத் மே சர் ஃபிரோசி. निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया. आयोग ने कहा, एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे. गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे. और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता. भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक. अब समाचार विस्तार से. निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे. बीएलओ बाद में इन दस्तावेजों को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे. ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया. आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था. हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है.
3: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है, तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है. इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
2: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन

0: निरीक्षण एसआईआर के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
1: इसी एसआईआर को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
2: एनसीसीएफ द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
0: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
2: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना, और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
3: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
4: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए, रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
5: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहां से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
3: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
2: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थ यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
3: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक, 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
4: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने

0: 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
2: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्कॉश में जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिल कुमार की मिक्स डबल जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Election Commission reiterates that order for SIR issued for all states and UTs with its unanimous approval. Says booth level officers will visit homes of electors issued notice during SIR to collect required documents. Union Minister Amit Shah inaugurates several NCCF initiatives in Kerala to boost women's empowerment through cooperatives. Chief Justice of India Surya Kant says drug abuse among children must be seen as child protection issue. External Affairs Minister S. Jaishankar to address United Nations General Assembly in New York tonight. And in Asian Games, Indian men's and women's kabaddi teams clinch gold medals in Japan. Tajinder Pal Singh Tur wins silver in men's shot put. India's medal tally reaches 30 with 4 gold, 12 silver and 14 bronze. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said, a meeting of the Commission was held today where Chief Election Commissioner Ganesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs, starting with Bihar, was issued with the unanimous approval of the Commission.
4: A meeting of the Election Commission of India was held today. The Chief Election Commissioner, Shri Gyanesh Kumar, and Election Commissioners, Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Dr. Vivek Joshi, were present in today's Commission meeting. The Commission unanimously took a number of decisions in today's meeting, which are being shared through today's ECI press note.
3: The Election Commission today said booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing special intensive revision to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECI Net platform. The Commission clarified that such persons will not be called

0: नमस्कार, विज्ञान भारती के इस अंक में मैं शिबा राकेश
1: और मैं सुरेंद्र राजेश्वरी
0: आप सभी का स्वागत करते हैं। विज्ञान भारती के इस अंक में आप सुनेंगे संपादकीय, जिसका विषय है निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय पर प्रोफेसर उमेश वाघमारे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव से भेंट वार्ता।
0: ब्रह्मा मिशन लैब, अतीत से भविष्य का सफर, विषय पर डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी, अध्यक्ष ब्रह्मा मिशन, बीरबल सहानी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ से बातचीत।
1: CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से भेंट वार्ता, विषय होगा भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम।
0: स्वच्छ और स्वस्थ नदी, पारिस्थितिकी तंत्र के सूचक, गांगेय डॉल्फिन विषय पर जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से भेंट वार्ता।
1: कुछ विज्ञान जगत की बातें, विज्ञान समाचार, महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों की जयंती, निधन, विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े प्रमुख दिवस।
0: आज हम विज्ञान भारती की शुरुआत निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत विषय से कर रहे हैं। निजी नवाचार के पंख लगा अनंत आकाश नापता भारत, ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से एक क्रांतिकारी अध्याय है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज स्वतंत्र, आधुनिक और बेहद आक्रामक निजी विजन के साथ वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमा रहा है। सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किए गए नीतिगत सुधारों और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के गठन ने वो ठोस धरातल तैयार किया जिस पर आज नए भारत के स्पेस प्रोनियर्स अपनी कामयाबी की इमारत खड़ी कर रहे हैं। आंकड़ों के झरोखे से देखें तो ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में वर्ष 2014 तक मात्र एक पंजीकृत स्पेस स्टार्टअप था, जिसकी संख्या अगस्त 2026 तक बढ़कर 440 से अधिक हो चुकी है। ये आंकड़ा ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि भारत के युवाओं में अंतरिक्ष तकनीक को लेकर कितनी उत्सुकता और प्रतिभा है। इस नीतिगत और वित्तीय प्रोत्साहन का परिणाम पृथ्वी से आकाश तक साफ दिख रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस ने निजी रॉकेट विक्रम एस लॉन्च कर इतिहास रचा, तो वहीं जुलाई

2026 में विक्रम 1 की सफल उड़ान ने देश को लो अर्थ ऑर्बिट में निजी उपग्रह स्थापित करने की पूर्ण क्षमता दी है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन विकसित करना ये साबित करता है कि भारतीय स्टार्टअप्स अत्याधुनिक नवाचार का नेतृत्व कर रहे हैं। हाल ही में सरकार द्वारा घोषित 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस वेंचर कैपिटल फंड और 500 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड इस रफ्तार को और तेज करेगा। फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था यानी स्पेस इकोनॉमी का आकार 8.4 से 9 बिलियन डॉलर के बीच आंका गया है, जो वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 2 से 3%

0: वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का लगभग 2-3% है। भारत सरकार का लक्ष्य इस अर्थव्यवस्था को वर्ष 2035 तक 40 से 45 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 8% हो जाएगी। स्पष्ट है कि भारत का स्पेस सेक्टर अब सिर्फ अकादमिक शोध या सरकारी गौरव का विषय नहीं रह गया। ये एक आत्मनिर्भर, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक उद्योग बन चुका है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया उपग्रह भारत के निजी लॉन्च पैड से अंतरिक्ष की सैर पर निकलेंगे।
1: जब हम वर्ष 2047 की कल्पना करते हैं तो आंखों के सामने एक ऐसे भारत की तस्वीर उभरती है जो आत्मनिर्भर हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो और विश्व पटल पर ज्ञान विज्ञान का नेतृत्व कर रहा हो। इस महासंकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार, और इसे साकार करने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो आइए सुनते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर उमेश वाघमारे से प्रवीण कुमार की बातचीत।
2: देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा?
3: द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर वी आर वर्किंग इन वेरियस लेवल्स। इन वन प्रोग्राम वी फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, जहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स, PhD स्टूडेंट्स, उसके बाद में फैकल्टी मेंबर्स, सबको सपोर्ट किया जाता है। इसको इंस्पायर स्कीम कहते हैं। दूसरे एफर्ट में मिशन लेवल में काम चल रहा है, यानी एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, जिसके थ्रू क्वांटम बिट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स बना सकते हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रहे हैं और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसकी वजह से सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। और एक एफर्ट है क्वांटम सेंसिंग पर, कि जिसके थ्रू बहुत टाइनी चेंजेस जो होते हैं एनवायरनमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड हो, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सेंसर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, दे कैन बी यूज्ड इन डिफेंस, दे कैन बी यूज्ड इन ड्रोन्स। लॉट्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजीज आर बीइंग डेवलप्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे और एक मिशन है जो MIT का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा भी एफर्ट जारी है, जिसमें एक है कि हमारे देश का फाउंडेशनल मॉडल बनाने जा रहे हैं, यानी जिसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, जो आप टेक्स्ट का टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज में कन्वर्ट सकते हैं, मल्टी मॉडल में, वैसा मॉडल डेवलपमेंट जो करना है हमारी लैंग्वेजेस के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, तो जो है इंडिजिनस वो डेवलप हो रहे हैं।
2: और आए दिन सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की चर्चाएं होती रहती हैं, इसके लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है?
3: सो सेमीकंडक्टर इज अगेन अ मिशन, नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें फोकस इंडस्ट्री पर, नॉट रिसर्च बट मोस्टली ऑन डेवलपमेंट कैपेबिलिटी टू फैब्रिकेट चिप्स ऑन अ लार्ज स्केल। डिजाइनिंग वाज ऑलरेडी डन इन इंडिया, इनफैक्ट मोस्ट सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन इज डन इन by our colleagues, but actual manufacturing capability is being developed now by involving industry and also government funding for national semiconductor mission. Critical minerals ek naya initiative hai जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी काफी सारे हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं उस पर, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ऐसे है ना कि एक होता है एक्सट्रैक्शन फ्रॉम माइंस इज वन टाइप ऑफ थिंग, सेकंड इज रिसाइकलिंग, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है, बैटरीज होती है, बैटरीज में लिथियम होता है, उसका लिथियम एक बार बैटरी डाई हो गई तो कैसे एक्सट्रैक्ट करें, वो काफी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है कि जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट हो जाए। इनोवेशन इंडेक्स अभी वो 39 जो था हमारा ना, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नाउ होस्टिंग व्हाट इज कॉल्ड एज RDIF, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, जिसमें 1,00,000 crore रुपीज हैव बीन इन्वेस्टेड फॉर 5 years, एंड ईच ईयर दे विल गिव 20,000 crores, एंड दिस इज यूज बाय सेकेंड लेवल फंड मैनेजर्स टू गिव अ लोन टू अ स्टार्टअप कंपनी और अ डीप टेक कंपनी। डीप टेक कंपनी ये होती है कि साइंस के प्रिंसिपल बहुत क्रूशियल करके वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, स्केलिंग अप करते हैं। टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 4 से ऊपर जाने के लिए ये फंडिंग है, खाली इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन इंडस्ट्री को 50% फंडिंग खुद को लेके आना पड़ता है, और ये 50% हाँ, ये 50% बहुत लो इंटरेस्ट लोन होता है, लंबा पीरियड का लोन होता है
2: जी। और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है?
3: वो भी मिशन जैसा ही एफर्ट चल रहा है, जिसमें एक बड़ा एफर्ट है CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो जो ग्रीन हाउस गैस

0: उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर का, उसको कैप्चर करके स्टोर करना है और कन्वर्ट करना है कि जो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि मिथेनॉल हो. मिथेनॉल इज अ फ्यूल यू कैन यूज इन कार्स. So it's also called as carbon recycling. You use solar energy to reduce carbon dioxide using hydrogen to generate methanol. Clean energy, एक आपने सुना होगा गवर्नमेंट में अभी न्यूक्लियर पॉलिसी रिलैक्स कर दी है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं. न्यूक्लियर एनर्जी इफ यू लुक एट इट इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट एनर्जीज. और इसमें अगर माइक्रो साइज रिएक्टर्स सेट कर सकते हैं छोटे छोटे गांवों के लिए, ये बहुत इफिशियंट सॉल्यूशन होगा. दूसरा डेवलपमेंट फ्यूजन बेस्ड एनर्जी भी आ रही है. बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जीज है, जो सोलार हो, वो ऑलरेडी बहुत इकोनॉमिक हो गई है उसमें, और मैन्युफैक्चरिंग का ही काम बाकी है. हाइड्रोजन स्टिल एक्सपेंसिव. सी, जनरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एट लो कॉस्ट इज स्टिल अ चैलेंज.
1: और युवा श्रोताओं के लिए आपकी क्या सलाह होगी?
0: वन इज बी वेरी एम्बिशियस एंड करेजियस, not to be scared of failures. दूसरी चीज है कि hard work के सिवा कुछ नहीं होता है. अगर आपको बड़ा कुछ accomplish करना है तो दो चीजें करनी पड़ती है. एक है लोगों के साथ काम करो selflessly, और दूसरा है hard work करना चाहिए.
2: देश में एक राष्ट्र एक समय को लागू किया जा रहा है. इसके लिए भारत सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया है. ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं CSIR नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी भारत का राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम अरोड़ा से दिलीप झा की बातचीत. भारत का अपना टाइमिंग सिस्टम.
3: एक देश एक समय को लेकर के अधिसूचना जारी की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
4: हम भारत का माप विज्ञान केंद्र है, सो CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, और हम सभी प्रकार की जो मानक इकाइयां हैं सभी के स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं. टाइम भी उनमें से एक है. तो हम देश का जो भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है, हम देश का समय रखते आ रहे हैं काफी दशकों से. 1950-55 से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं. अभी हम ये भारत का मानक समय बनाते हैं, इसको इंटरनेशनल रेफरेंस टाइम जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेफरेंस टाइम है, जिसको कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम UTC के नाम से जाना जाता है, हम उसके साथ इसको बिल्कुल फॉलो करके चलते हैं. तो कुछ नैनो सेकंड्स के साथ हमारा भारतीय मानक समय UTC को ट्रैक करता है. ये कार्य हम कर रहे हैं, जो कि एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन की एक जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिसेमिनेट भी करते हैं, आम जनता तक हम समय को पहुंचाते हैं. अलग अलग तरह के माध्यम है. बहुत ज्यादा जिसको जरूरत है एक्यूरेसी की, जैसे कि इसरो है, उसको नैनो सेकंड से चाहिए, तो हम सैटेलाइट के माध्यम से देते हैं. आम जनता को हम इंटरनेट के जरिए टाइम देते हैं. अब ये जो अधिसूचना है, इसका महत्व ये है कि अभी तक हमारे देश में जो समय है, इसका एक रेफरेंस, सेंट्रल एक नेशनल रेफरेंस, वो अभी तक लीगल स्टेटस समय को नहीं मिला था. कई देशों में ये बहुत टाइम से पहले से चला आ रहा है कि वहां का जो राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान है, जो वो समय को रखता है, उसी समय को उस देश का लीगल समय माना जाता है. तो ये जो अभी अधिसूचना जारी हुई है, ये हमारे भारतीय मानक समय को वो लीगल स्टेटस दे रहा है. इसका ये मतलब है कि हर पर्पस से, जैसा इसमें मेंशन किया गया है, कि चाहे वो कानूनी हो या प्रशासनिक हो या जो भी हो, अब यही एक रेफरेंस रहेगा. उसकी ज्यादा जरूरत क्रिटिकल सेक्टर्स को. आजकल हम लोग बहुत डिजिटल काम कर रहे हैं, सब डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं. हम पैसा पे करते हैं, हम UPI ट्रांजेक्शन करते हैं, मोबाइल बैंकिंग करते हैं. फिर हमारी जो आजकल की आधुनिक सुविधाएं हैं, आजकल हम 4G 5G 6G वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं. तो ये जो सारा कुछ हम कर पाते हैं, इसमें टाइम स्टैम्प की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है. और अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ जानकारी करना चाहें, छानबीन करना चाहें, अगर कुछ गलत हो जाता है, तो वो जो छानबीन तभी अच्छे से हो सकती है कि अगर सभी टाइम स्टैम्प्स मैच हो. अगर उसमें मिसमैच होता है, और वो मिसमैच कब होगा, अगर सभी लोग अलग अलग सोर्स से टाइम लेंगे. अगर ये अधिसूचना को फॉलो करा जाएगा और सभी लोग एक ही मानक समय को फॉलो करेंगे, उसी सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे, तो ऐसी समस्याएं हैं जो आती हैं, ज्यादातर की जो फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड की बात की जाती है, वो फ्रॉड कंट्रोल में आएंगे, वो कम होंगे. तो देश की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है. और ज्यादातर क्रिटिकल सेक्टर्स, जैसे कि बैंकिंग है आपका, फाइनेंशियल सेक्टर है आपका, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, नेविगेशन ऑफकोर्स हमारी स्पेस एजेंसी है, स्मार्ट अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पावर ग्रिड्स हैं, ये जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, अगर ये सब कर लेंगे, भारतीय मानक समय को फॉलो करेंगे, तो काफी हद तक जो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, देश की सिक्योरिटी भी बेहतर होगी. तो ये इस अधिसूचना का अभी पर्पस है.
2: सितंबर का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में भौतिकी, रसायन, औषधि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युगांतरकारी योगदान देने वाले

0: कई दिग्गज वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। आइए उनके योगदान को याद करें। भारत के महान सिविल इंजीनियर और राजनेता सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। उनकी दूरदर्शी जल प्रबंधन और बांध तकनीकों के सम्मान में भारत प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाता है।
1: महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों का जनक इन्हें माना जाता है। इनके आविष्कारों ने आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की नींव रखी। जॉन डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 को हुआ था। इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी एटमिक थ्योरी के प्रणेता और वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस या डाल्टोनिज्म पर पहला वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है। श्रोताओं, हमारी पृथ्वी और प्रकृति अपने गर्भ में लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास समेटे हुए हैं। प्राचीन जीवाश्म, पुरानी तलछट, पेड़ पौधों के सूक्ष्म अवशेष और बदलते मौसम के निशान। लेकिन ये केवल अतीत की धूल नहीं बल्कि हमारे भविष्य की कुंजी हैं। आज हम आपको ले चलते हैं लखनऊ स्थित ऐतिहासिक बीरबल सहानी पुराविज्ञान संस्थान BSIP में, जहां आधुनिक तकनीक और प्राचीन रहस्यों का संगम हो रहा है एक बेहद महत्वाकांक्षी पहल में, जिसका नाम है ब्रह्मा मिशन। इस मिशन और प्रयोगशाला में क्या कुछ होगा और इससे कौन कौन से हमें लाभ होंगे, इसे जानने के लिए सुनते हैं ब्रह्मा मिशन की प्रमुख वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अंजलि त्रिवेदी से प्रवीण कुमार की बातचीत।
2: डॉक्टर त्रिवेदी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि ब्रह्मा मिशन है क्या और इसका नाम ब्रह्मा क्यों रखा गया है।
3: ब्रह्मा मिशन एक ऐसा मिशन है जो पहली बार भारतवर्ष में शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम है बीरबल सहानी रिपोजिटरी फॉर AI एनेबल्ड फॉसिल हेरिटेज मॉडलिंग एंड आर्काइव। ऐसी वैज्ञानिक पहल है जिसमें हमारे पास उपलब्ध फॉसिल जैसे पॉलन, स्पोर्स, लीव्स, वुड, फ्रूट और अन्य जितने भी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटली व्यवस्थित करना और संरक्षित करना है। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और आधुनिक मॉडलिंग टेक्निक्स को भी जोड़ा जाएगा। हमारा उद्देश्य है पृथ्वी के अतीत को समझना, वर्तमान को बेहतर ढंग से देखना और भविष्य के लिए वैज्ञानिक ज्ञान तैयार करना। पृथ्वी का इतिहास बहुत लंबा है, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और इस इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राकृतिक अभिलेखों में सुरक्षित हैं। हमारे पास जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जैविक और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रमाण फॉसिल, सेडिमेंट और पॉलन एक्सेट्रा के रूप में रिकॉर्ड के रूप में मौजूद हैं। समस्या ये है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं, वो अलग अलग कलेक्शंस और अलग अलग लेबोरेटरीज और रिसर्च प्रोजेक्ट में बिखरे हुए हैं। इसीलिए ब्रह्मा मिशन का प्रयास है कि इन वैज्ञानिक अभिलेखों को डिजिटाइज, स्टैंडर्डाइज किया जाए और भविष्य में रिसर्चर इनके प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। ब्रह्मा मिशन की खास बात यही है कि इसे मल्टी प्रॉक्सी साइंटिफिक रिकॉर्ड्स के रूप में बनाया गया है। पॉलन और स्पोर्स के साथ बाकी और भी जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। इसके अलावा जियोकेमिकल रिकॉर्ड्स, पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड, सेडिमेंट्स और अन्य जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर प्रॉक्सी अपने अतीत के पर्यावरण का अलग अलग पहलू बताते हैं। जब हम इन सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ देखेंगे तो पेलियो एनवायरनमेंट की इंटरप्रिटेशन अधिक मजबूत और वैज्ञानिक बन जाएगी।
2: अभी आपने जीवन उत्पत्ति की बात की, तो इतने छोटे छोटे फॉसिल्स यानी जीवाश्म जीवन की कहानी कैसे बताते हैं?
3: यह वास्तव में पेलियो साइंस की सबसे रोचक बात है। एक छोटा सा फॉसिल भी अपने समय में बहुत बड़ी कहानी बता सकता है। फॉसिल से हमें पता चलता है कि अतीत में कौन कौन से जीव और पौधे मौजूद थे, उनका विकास किस प्रकार हुआ और समय के साथ बायोडाइवर्सिटी में क्या परिवर्तन आया। जैसे पॉलन और स्पोर्ट्स हमें अतीत की वेजिटेशन को समझा सकते हैं, इसी तरह अलग अलग रिकॉर्ड्स को हम एक साथ देखने पे जीवन के विकास, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट के साथ जीवों का क्या संबंध था, वो हम ज्ञात कर सकते। क्लाइमेट चेंज आजकल एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू है, लेकिन क्लाइमेट को समझने के लिए केवल वर्तमान के डेटा को देखना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी जानना होगा कि अतीत में क्लाइमेट और एनवायरनमेंट किस प्रकार बदलते रहे हैं। जो भी हमें मिलता है, जैसे पॉलन है, पत्तियां हैं, लकड़ियां हैं, सेडिमेंट्स हैं, जो भी हमें मिलता है वो हमें पास्ट एनवायरनमेंट की जानकारी देते हैं। जब हम इन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को

0: मॉडर्न रिकॉर्ड्स डेटा के साथ मॉडलिंग के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और इन्वायरमेंटल चेंजेस की बहुत लंबी जानकारी मिल जाती है। इससे हम फ्यूचर रिसर्च और इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बता सकते हैं। आज रिसर्च तेजी से इंटरडिसिप्लिनरी हो रही है। एक युवा साइंटिस्ट केवल एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारे विषयों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो एक युवा साइंटिस्ट के लिए ये जरूरी है कि उसको AI, पैलियंटोलॉजी के साथ साथ डेटा साइंस, पैलिनोलॉजी और क्षेत्र में जिसमें वो काम कर रहा है उसमें AI की वजह से उसको मदद मिले। ब्रह्मा मिशन ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्लेटफॉर्म बन सकता है।
1: और अब कुछ विज्ञान समाचार।
2: देश की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन और महारत्न कंपनी ONGC ने ओडिशा तट के पास महानदी ऑफशोर बेसिन में एक गहरे पानी वाले कुएं में गैस की खोज की है। समुद्र मंथन पहल के तहत ये कुआं खोजा है। कोणार्क से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित ये कुआं इस अभियान के तहत ONGC द्वारा महानदी बेसिन में खोदा गया पहला कुआं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने अपने अंतरिक्ष सहयोग समझौते को 8 जनवरी 2032 तक बढ़ा दिया है। पुराने सहयोग के अलावा इस समझौते में कुछ नए क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, जैसे मानव और रोबोटिक अंतरिक्ष अन्वेषण, अंतरिक्ष मौसम और बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थिरता। भारतीय विज्ञानियों को अंटार्कटिका के इर्द गिर्द समुद्री बर्फ में बार बार दिखाई देने वाले खुले पानी के एक रहस्यमय इलाके के 250 वर्ष तक के इतिहास का पता लगाने में सफलता मिली है। इससे ये जाहिर होता है कि अतीत में इस तरह की घटनाएं कई बार हुई। इनमें से कुछ बड़ी घटनाओं को देखा भी जा चुका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR के शोधकर्ताओं की अगुवाई में ये अध्ययन किया गया है। इसमें डेनमार्क और नॉर्वे के विज्ञानी भी शामिल रहे। शोधकर्ताओं की टीम ने मॉड राइस पोलिना समुद्री बर्फ से घिरे खुले समुद्र का एक बड़ा इलाका के इतिहास का पता लगाने के लिए अंटार्कटिक आइस कोर का उपयोग किया। असम के मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को गुवाहाटी के पास चंद्रपुर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के एडवांस्ड रडार रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी। प्रोजेक्ट नेत्रा के तहत विकसित होने वाली ये सुविधा अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं और कक्षीय मलबे की निगरानी तथा ट्रैकिंग में भारत की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही है। आइए अब उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि सितंबर माह में है। सितंबर का महीना न केवल महान वैज्ञानिकों के जन्म के लिए जाना जाता है, बल्कि इस महीने में विज्ञान जगत ने कई ऐसी विभूतियों को खोया है जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। भारत के प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना का निधन 24 सितंबर 2004 को हुआ। वे 1974 में भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के मुख्य रणनीतिकारों और सूत्रधारों में से एक थे। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी।
1: सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर का निधन 28 सितंबर 1895 को हुआ था। उन्होंने दूध और पेय पदार्थों को जीवाणु रहित रखने की पाश्चरीकरण विधि खोजी और रेबीज एंथ्रेक्स के जीवन रक्षक टीकों का आविष्कार किया। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल का निधन 29 सितंबर 1913 को हुआ था। उनके द्वारा तैयार किए गए उच्च दक्षता आंतरिक दहन इंजन ने औद्योगिक उत्पादन, भारी परिवहन और समुद्री जहाजरानी के क्षेत्र में क्रांति ला दी।
2: नदियों की अविरल धारा केवल पानी का बहाव नहीं, बल्कि जीवन का एक पूरा संसार अपने भीतर समेटे हुए है। और जब बात हमारी पावन गंगा, घाघरा, चंबल या ब्रह्मपुत्र जैसी सदानीरा नदियों की हो, तो जल की गहराई में एक ऐसा अद्भुत जीव तैरता है जिसे प्रकृति ने दृष्टि तो सीमित दी, लेकिन संवेदनाएं और बुद्धिमत्ता अपार बख्शी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन यानी गैंजेटिक डॉल्फिन की। गांगेय डॉल्फिन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसे समझने के लिए आइए सुनते हैं जीव विज्ञानी डॉक्टर गोपाल शर्मा से अल्पी कुमारी की ये बातचीत।
3: ये पूरे विश्व के लिए एक अद्वितीय प्राणी है जो हमारे गंगा में है, और गंगा में रहते हुए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को अपने ओर आकर्षित किया है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली रिवर सिस्टम में मिलता है, जिसमें इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। पूरे इसके जो भी वितरण क्षेत्र हैं, वो चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे मेघना हो, सभी जगहों पर

0: इसकी हत्या बहुत ही तेजी से हो रही थी और मछुआरों को पता नहीं था कि हमारे जल तंत्र में, हमारे जलीय जो सिस्टम है उसमें इसकी उपयोगिता क्या है। इसलिए हम लोगों ने जा करके लोगों को बताया और खास करके मछुआरों को बताया कि आप गंगा के डॉल्फिन को नहीं मारें, इनको बचाएं, इससे आपको मछली भी ज्यादा मिलेगा और ये जो विचित्र प्राणी है जो हमारे गंगा के रिवर सिस्टम में मिलता है
1: जी,
0: ये और कहीं पर नहीं मिलता है, इसलिए इसको बचाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये हेरिटेज एनिमल जैसा है। ये प्रस्ताव आया वैज्ञानिकों की तरफ से कि गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित कर दिया जाए तो इस पर विशेष संरक्षण का प्रभाव रहेगा और लोग इस पर ध्यान देंगे। जब गंगा के डॉल्फिन और समुद्री डॉल्फिन दोनों के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की 2020 में, तब से राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाने लगा है। गंगा के डॉल्फिन को सोंस इसलिए बोलते हैं कि 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट के बीच में पानी के ऊपर आकर के इनको सांस लेना पड़ता है, तो ये बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं और जब सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं उस समय सूं की आवाज निकलती है, इसीलिए इसका नाम सूंसू या सोंस बोलते हैं। गंगा के डॉल्फिन अगर नहीं रहेगी हमारे इकोसिस्टम में तो पूरी की पूरी जो खाद्य श्रृंखला है, जो फूड चैन है, वो समाप्त हो जाएंगी, वो परेशान हो जाएंगे और वो पूरे रिवर तंत्र को प्रभावित करेगा। गंगा का डॉल्फिन और जो समुद्र का डॉल्फिन है, सभी का फिजियोलॉजी एक ही है। डॉल्फिन रेस्क्यू वैन या गंगा रेस्क्यू वैन के नाम से आप एक एम्बुलेंस चलाइए और एम्बुलेंस बनाइए जिसमें 24 आवर्स ये सारी व्यवस्थाएं रहनी चाहिए जिसमें हम गंगा के डॉल्फिन को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू करें। ये बातें प्रधानमंत्री जी तक गया और पर्यावरण मंत्रालय में भी इसकी चर्चा हुई और आज ये कंसेप्ट आया कि हम एक गंगा रिवर डॉल्फिन एम्बुलेंस, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बिहार की नदियों में लगभग 2220 डॉल्फिन हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 2300 के आसपास डॉल्फिन है। गंगा के डॉल्फिन का असल गार्जियन मछुआरे ही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करीब और सबसे ज्यादा समय 24 घंटा में मछुआरे ही उसके साथ देते हैं और रहते हैं। तो अगर घाटों पर आप जाते हैं तो आप प्लास्टिक न ले जाएं, या वैसे वेस्ट, वैसे धातु या वैसे कोई भी प्लास्टिक या कोई भी कपड़ा या कोई भी सामान न ले जाएं जो गंगा में आप सीधे फेंकते हैं। बहुत लोगों की मान्यता ये है कि हम जो भी घर में पूजन सामग्री जब हम को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो शुरू से धारणाएं हैं कि गंगा में ले जाकर इसे प्रवाहित कर दिया जाए, लेकिन प्रवाहित करने से गंगा प्रदूषित होती है, इसलिए आप गंगा के तरफ ले जाएं। गंगा के हर एक घाटों पर एक जगह बनाया गया है, नियत जगह है, उन जगहों पर आप फेंकिए, आपकी आस्था बरकरार रहेगी कि गंगा की डॉल्फिन घड़ियाल और मगर नहीं है, ये बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है, आपसे गंगा के डॉल्फिन प्यार करती है, गंगा के डॉल्फिन से आपको कोई खतरा नहीं है। गंगा के डॉल्फिन अगर आपको नहाते वक्त मिल जाए तो आप डरे नहीं, आप खूब आराम से स्नान करिए क्योंकि आपको किसी तरह का कोई हार्म या कोई भी इससे खतरा नहीं पहुंचेगा।
2: और अब बात करेंगे विज्ञान और पर्यावरण से जुड़े खास दिवसों की, जिन्हें भारत सहित विश्व भर में सितंबर महीने में उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है।
3: 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे मनाया गया। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक नवाचार और राष्ट्र निर्माण में तकनीकी योगदान के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। वर्ष 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में ये दिवस मनाया जाता है। ये पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत के संरक्षण का संदेश देता है।
2: 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। तेजी से बढ़ने वाले और पर्यावरण अनुकूल बांस के सतत उपयोग कार्बन अवशोषण और हरित आजीविका को रेखांकित करता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। विश्व भर में गैंडों की सभी 5 प्रजातियों, विशेषकर भारत में एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण और अवैध शिकार पर रोक का संकल्प लिया गया।
3: तो ये थी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति। अगली बार फिर मिलेंगे नए उत्साह और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: नमस्कार।

वाचन स्वर शिबा राकेश और सुरेंद्र राजेश्वरी के थे। आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी पटना के सहयोग से तैयार किए गए इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। उन्होंने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा

0: program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website, and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Finance Minister Nirmala Sitharaman has expressed confidence that India can achieve economic growth of over 10%, stressing on the need for greater adoption of technology and innovation. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will address the high-level session of the 81st United Nations General Assembly in New York tonight. According to the UN, the 81st session will focus on revitalizing global cooperation, advancing the Sustainable Development Goals, and promoting collective action for peace, dignity, and equality. Both the Indian men's and women's kabaddi teams today won gold medals at the IEG Nagoya Asian Games 2026 in Japan. The Indian men's kabaddi team clinched gold, beating Iran 40-34. India has made a strong medal haul at the Asian Games today, adding 7 medals across kabaddi, athletics, shooting and squash. And with that, we end this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं किरण शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने का ईरान का 7 दिन का प्रस्ताव खारिज किया। रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमले तेज, हमलों में यूक्रेन के 4 लोगों की मौत। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंद्र पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिस्टिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियानों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र

0: पटेल ने केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ आज कच्छ जिले के दीनदयाल पतन प्राधिकरण में 150 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले ई मेथनॉल संयंत्र की आधारशिला रखी। श्री सोनोवाल ने कहा कि इस संयंत्र के शुरू होने से देश भर में रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे।
1: हमारे कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, महाराष्ट्र की JNPA और बंगोपसागर में बचे हुए हमारे उड़ीसा के पारादीप पोर्ट, सार पोर्ट को आज मेगा पोर्ट का इस्तेदास मिला। इसका मतलब है एक पोर्ट ने 150 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी करने में सफलता प्राप्त की है। जितना भी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, हमारा उपार्जन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा।
0: बांग्लादेश ने एक विशेष राष्ट्रव्यापी खसरा रुबेला MR टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस पहल के अंतर्गत 6 महीने से लेकर 5 साल से कम उम्र के लगभग 34 लाख ऐसे बच्चों को लक्षित किया गया है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है या छूट गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इंटेंसिफाइड MR कैचअप वैक्सीनेशन शीर्षक से ये अभियान आज ढाका के विभिन्न क्षेत्रों में TND खेल के मैदानों में चलाया जा रहा है। पुर्तगाल और मॉरिशस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का फिर समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 81वीं महासभा की चर्चा के दौरान दोनों देशों ने समर्थन किया। ये समर्थन वर्तमान क्षेत्रीय और राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार की व्यापक मांगों के बीच मिला है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक मानचित्र जारी किया है जिसमें हॉर्मुज जल डमरू मध्य को ट्रंप जल डमरू मध्य के तौर पर दिखाया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर खोलने के लिए ईरान के 7 दिन के प्रस्ताव को ठुकराने वाली श्री ट्रंप की घोषणा के बाद ये घटनाक्रम सामने आया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने फिर कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अमेरिका की मांगों को मानने की ईरान की इच्छा पर भी संदेह जताया है। राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि ईरान पर फिर से अमेरिकी सैन्य हमले की आशंका बनी हुई है। ईरान ने 7 दिन की शांति प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया था जिसके अंतर्गत सभी 5 मोर्चों पर लड़ाई रुक जाती। इसके बदले अमेरिका से ईरानी बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी हटाने, ईरान के रोके गए फंड जारी करने और तेल से जुड़े प्रतिबंधों में छूट देने की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव में हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने की बात भी कही गई थी। यह कदम इराकी हवाई अड्डों पर ईरानी उड़ानों के निलंबन के बाद उठाया गया है। विश्व दर्पण के लिए चाहत सिंह।
0: रूस और यूक्रेन के बीच हवाई हमले तेज होने के साथ यूक्रेन में 4 लोग मारे गए हैं। रूस ने यूक्रेन पर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों, ग्लाइड बमों और जेट चालित ड्रोनों से हमला किया है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले से एक डेटा सेंटर क्षतिग्रस्त हो गया है। ये मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और स्टारलिंक उपग्रह संचार प्रणालियों को सहायता प्रदान करता था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि रूस हर दिन युद्ध को और बढ़ा रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की मांग की है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के तेल रिफाइनरियों और औद्योगिक सुविधाओं पर ड्रोन हमले जारी रखे हैं। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के प्रस्तावित विरोध मार्च से पहले उसके कार्यकर्ताओं और सांसदों और नेताओं की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मानवाधिकार निगरानी संस्था ने कहा कि महिलाओं से सहित PTI समर्थकों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कुछ परिवारों ने कहा है कि उन्हें अपने रिश्तेदारों के ठिकानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आयोग ने अधिकारियों से शांतिपूर्ण सभा के अधिकार को बनाए रखने का आग्रह किया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों तथा आवाजाही की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों पर आपत्ति व्यक्त की। और एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को

0: Please stay tuned in for the news in Hindi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
2: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मॉर्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
3: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: गृहमंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद की जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Saturday, we'll be taking calls from you on matters related with markets, business or economy. But do remember that we do not address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीटी कोड 011 भी डायल करें. चर्चा को और समृद्ध बनाने के लिए हमारे साथ भाग ले रहे हैं बाजार और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा और पुनीत जैन. शिशिर जी, पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
0: A warm welcome to both of you.
2: Thank you.
0: Thank you.
1: चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: यूनाइटेड स्टेट्स रिजेक्ट्स Iran 7-day proposal to reopen the Strait of Hormuz. Indian stock market remains under control of bears for 7th consecutive week. And Wall Street wraps up week with notable gains.
1: अमेरिका ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य को खोले जाने वाले ईरान के 7 दिवसीय प्रस्ताव को खारिज किया. भारतीय शेयर बाजार पर लगातार 7वें सप्ताह मंदड़िए हावी और वॉल स्ट्रीट ने बढ़त दर्ज करते हुए सप्ताह का अंत किया.

0: देखिए, जो पहला प्रश्न आपका है कि एआई रिलेटेड कंपनीज का, अगर आप बीते सप्ताह का देखें या उसके पहले सप्ताह में देखें, हमने दो तरीके का ट्रेंड देखा। एक बार हमने देखा कि जब जो एआई बेस्ड कंपनीज थी या जो टेक्नोलॉजी कंपनीज थी उसमें बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि एआई को लेकर के जो दुनिया की कंपनियां हैं उन्होंने कहा था कि उसकी रफ्तार को कम करना है। और उसके पहले ये कहा गया था कि जो एआई कंपनीज हैं उनको अपनी सुविधाएं विकसित करने के लिए आईटी कंपनियों की मदद की ज़रूरत है। तो इस समय मुझे लगता है कि एआई कंपनी को लेकर के उत्साह रखना चाहिए, लेकिन अति उत्साह नहीं होना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा, जैसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपये शेयर में लगाने के लिए है तो आप 10 रुपये या 15 रुपये अगर आप एआई में लगाते हैं और एक कहते हैं ना कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन लेकर के चलें तो वो बेहतर होगा। तो ये आपके पहले प्रश्न का जवाब है। दूसरा आपका प्रश्न जो था वो शायद थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप उस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से नहीं रख पाए, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईपीओ के बाद जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसको ग्लोबली रिकॉग्निशन होने में कितना समय लगता है। देखिए, ये कोई समय तय नहीं है। एक कंपनी अगर अच्छी है तो उसको वैश्विक स्तर पर या घरेलू स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए आईपीओ की जरूरत नहीं होती, उसे अपने प्रोडक्ट की जरूरत होती है, उसे अपने सामान की जरूरत होती है, अपनी सेवाओं की जरूरत होती है। आईपीओ एक तरीके से निवेशकों का भरोसा जीतने की कोशिश है, निवेशकों को एक उम्मीद जगा, मतलब निवेशकों के बीच एक उम्मीद ये देता है कि ये कंपनी अच्छा करेगी। तो दो अलग अलग पहलू हैं और कंपनियां, कई कंपनियां हैं अगर आप देखें आईटी क्षेत्र में जो कि वैश्विक स्तर पर भी काफ़ी अच्छा नाम कर रही हैं और वो आईपीओ में भी उनको आए हुए काफ़ी समय हो गया, उनके शेयर प्राइसेस भी ठीक ठाक चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसके लिए कोई समय सीमा तय करें कि कितने समय में उनको वैश्विक ख्याति मिलेगी, शायद वो उचित नहीं होगा।
1: बेंगलुरु से हमारे साथ एनआर प्रसाद जुड़ रहे हैं। प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा, दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बेंगलोर। हेलो राजेश जी, हेलो प्रिया जी, मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा, टू क्वेश्चंस।
0: Yeah, please go ahead.
2: Sir, this is regarding first is, I think GST Council meet is on 7th October. They're going to discuss this UPI MDR issue plus other processes. Now, from 15th onwards, if it's going to be on MDR, whatever the issue comes out, would it hit the banking sector? This is my first question. Second question is, this PLI, second installment of around 19,000 crore being released or under the process of getting released, which sector can revive because of this in the manufacturing sector? Thank you. These are my two questions.
0: Okay. So what I will do, I will answer the first question, and the second question I will request Mr. Jain to talk about that. So talking about the GST Council meeting, which is scheduled to take place on 7th, and it has already been clarified that the effort and the focus will be entirely on the process reform. Of course, you are, there is a one big issue which is about the GST on MDR. And see, I mean, if you take the MDR thing, I mean, any transaction which is above rupees 2000, where we are going to have the 0.4% for the normal transaction, then 5 rupees flat fee for insurance premium or railway tickets or for agriculture inputs, and then 0.02 for the stock market transaction. So when somebody is making a transaction, then 18% GST will be charged because this is a financial service. Now the big question was that what will happen to those traders who are not registered and whether they will get the ITC set off or not. So the banks and the others will not be affected in a way because they are going to get the set off. I mean, entire GST outgo for all kind of services, they can also adjust whatsoever GST they have to pay on the MDR. So it's not going to affect the big merchants or the merchants which are the registered one, which are the regular GST SSE. Of course, the composition GST SSE may get sometime affected, but please remember that government has assured that if there is any problem, the proposal can be taken up by the GST Council and some favorable decision is expected. So please wait till 7th. But overall, I think the majority of traders, majority of the businesses which are registered, regular GST SSE, they are not going to be affected by this thing.
3: So Puneet, which sectors, which manufacturing sectors will be affected once the tranche is released?
4: So Rajesh, in fact, the PLI scheme which was launched and it has really turned out very good results has so far been focused on incentivizing the manufacturing sector, and the most visible benefits have really gone to the electronic sector, so smartphones and electronic goods. Mm-hmm. and

0: And those sectors, and then we had automobiles, which also had a certain tranche of for the solar renewable energy, automobiles and electronics. So mostly these sectors were targeted in the first, you can say, version of PLI scheme. However, now government has expanded that sector, that scheme, the scope of benefits, and the next target, the next sectors that are being targeted, basically include pharmaceuticals, chemicals and semiconductor sector, because these are the areas where we believe that India will now have the edge, the technological edge and knowledge edge to forge ahead. And I think that is appropriate, because these are the areas where pharmaceuticals, for instance, chemicals, semiconductors, of course, we're trying to make a headway and try to create a place for ourselves. Very, very competitive sectors. I think it is very, very good, very farsighted on part of the government to incentivize these sectors, because these are the areas where we can really make a headway. So you look for benefits in pharmaceuticals, chemicals and semiconductors.
1: आइए श्रोताओं, अब जानें कि सप्ताह के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा व्यवहार किया। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार सातवें सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और कमजोर वैश्विक संकेतों से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई। पांच में से तीन कारोबारी सत्रों में बाजार बढ़त में रहे, लेकिन बृहस्पतिवार को भारी बिकवाली के चलते प्रमुख सूचकांक 1.6% से अधिक फिसले और बाजार नुकसान के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 399 अंक यानी आधे प्रतिशत से अधिक लुढ़ककर 73,896 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 205 अंक यानी 0.9% की गिरावट के साथ 23,141 पर स्थिर हुआ। पिछले सप्ताह में दोनों प्रमुख सूचकांकों में करीब 6% की गिरावट दर्ज की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 2% से अधिक, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.8% की गिरावट आई। बाजार में उतार चढ़ाव का संकेतक इंडिया विक्स सप्ताह के दौरान 6.7% बढ़कर 12.16 पर बंद पहुंच गया। क्षेत्रीय सूचकांकों में निफ्टी आईटी लगभग 2.5%, निफ्टी प्राइवेट बैंक 1.5% और निफ्टी एनर्जी में करीब 1% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं निफ्टी रियल्टी 3% की बढ़त के साथ सबसे अधिक लाभ में रहा। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा और एफएमसीजी सूचकांकों में भी करीब 1% की बढ़त दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस सप्ताह 6 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.82 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पुनीत, लगातार सातवें सप्ताह की गिरावट अगर हम देखें, किस दिशा में हमारा बाजार अब रुक करके बैठा है?
0: देखिए, जैसे शिशुर ने शुरुआती दौर में ही प्रोग्राम में बताया था कि चार फैक्टर्स हैं इस वक्त जो बाजार को दबाव में ला रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो वॉर का माहौल है, जो ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रहे हैं, उससे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है भारत के बाजारों पर। यूएस बॉन्ड यील्ड्स 5% से ऊपर चली गई हैं, उससे भी हमारे जो इन्फ्लोज हैं, जो लिक्विडिटी है, वो उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और चौथा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, लगातार सेलिंग चल रही है। इस महीने भी करीब करीब 20,000 करोड़ का नेट सेलिंग एफआईआईज ने किया है। और कुछ हद तक मैं कहूंगा कि घरेलू बाजारों को देखें तो एक तो महंगाई, थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, और जो एक तांता लगा था आईपीओज का, उसने भी काफी लिक्विडिटी बाजार से करी है। जब तक ये फैक्टर्स नहीं बदलेंगे, खासतौर से जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उसी से क्रूड कच्चे तेल की कीमतों पर, उसी से इन्फ्लेशन पर, यूएस बॉन्ड यील्ड, ये सभी उससे अफेक्टेड हैं। तो मुझे लगता है कि ये जब माहौल बदलेगा तभी कोई बड़ी हम यहाँ से बदलाव देख सकते हैं। बाजार एक ट्रेडिंग रेंज में लगातार 7 सप्ताह से बाजार गिरा है। मेरा ऐसा अनुमान है कि थोड़ा यहाँ से पुल बैक हम देखेंगे और बाजार में शायद अगले सप्ताह हम थोड़ा पुल बैक देख सकते हैं, बिकॉज वैल्यू बाइंग होगी डेफिनेटली। पर मुझे कोई सस्टेन्ड बाइंग या सस्टेन्ड अपट्रेंड तब तक नहीं होगा जब तक ये फैक्टर्स में बदलाव नहीं आएगा।
1: फरीदाबाद से हमारे साथ सुभाष जुड़ रहे हैं। सुभाष जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार सर। सर, मैं ये जानना चाहता था कि लगातार 2 साल से ये निफ्टी और सेंसेक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, ये रिटेल इन्वेस्टर कहाँ जाएंगे सर? ये तो बिल्कुल भी, हमें तो बैंक जो एफडी जो रिटर्न मिलता है वो भी बिल्कुल नहीं मिल रहा, नेगेटिव में जा रहे हैं जितने।
0: सुभाष जी नमस्कार, आप सही कह रहे हैं कि यदि हम पिछले 2 वर्षों का हम आंकड़े देखें तो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स को पिछले 2 वर्षों में

0: बहुत बड़ी बढ़त नहीं मिली है। हालांकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर है वहां पर डेफिनेटली प्रॉफिट आए हैं, लेकिन जो लार्ज कैप्स हैं और इंडेक्स को अगर हम देखें तो वहां बहुत प्रॉफिट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ और वर्षों जाएं, यानी हम अगर आप 5 वर्ष से स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टेड थे तो आप देखेंगे कि वहां पर जो बेनिफिट्स हैं इन्वेस्टर्स को वो काफी रहे हैं। 9 से 10% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिली है। तो इसका जो मैं कहूंगा कि मैसेज है वो ये है कि आप शॉर्ट टर्म में मत घबराइए। ऐसा रहता है, हमने बहुत बार देखा है पिछले कई वर्षों में, 2-3 दशकों में हमने देखा है कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट्स में कभी कभी रिटर्न नहीं आती है। लेकिन यदि आप यहाँ बने रहेंगे, अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे 4-5 वर्ष में या उससे ज़्यादा, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिटर्न आएगी। और हमारे पिछले कई वर्षों के अगर 40-50 साल के हम डेटा देखते हैं तो ये बात तय है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अबव 5 ईयर्स उसमें आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगी। आप इससे परेशान न हो, आप मेरे ख्याल से आप इसमें बने रहें तो बेहतर है।
1: Moving on, US stock markets ended higher yesterday, supported by gains in AI-related technology stocks. However, elevated crude oil prices and a recent surge in US Treasury yields kept investors on edge. Among the major indices, the Dow Jones Industrial Average climbed 0.9%, while the S&P 500 and NASDAQ Composite rose 0.5% each. For the week, NASDAQ rose over 2% after it notched a record high close on Tuesday. The S&P gained 1.2% and the Dow added 0.3% over the week. Meanwhile, US President Donald Trump said he had a very productive meeting with Chinese President Xi Jinping following a 3-day summit that showcased personal diplomacy rather than major breakthroughs in economic relations.
2: वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। और दिल्ली से कृपा शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी धन्यवाद। मैं ये दो सवाल है मेरे, एक तो
2: जी अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्कार, हेलो।
2: हाँ, बोलिए, अपना सवाल पूछिए।
3: जैसे कि जीएसटी घटने के बाद कंपनियों ने अब क्या नई ट्रिक अजमाई है कि जो रेट थे वो कुछ उनके अपने एमआरपी बढ़ा दी है और वो रेट के रेट वैसे भी इनके वैसे ही चलते आ रहे हैं, ये कुछ चीजों में हमने चेक किया। दूसरा सवाल मेरा यह है, जैसे कि हमने पहले एक व्हाइट सोना खरीदा हुआ है तो ये इसकी जानकारी चाहिए कि व्हाइट सोने का रेट मार्केट से, में सुना है कि येलो सोने से महंगा है।
4: मेरे ख्याल से जीएसटी के मामले में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आपने कहा कि जो खुदरा मूल्य है, अधिकतम खुदरा मूल्य जिसको हम लोग एमआरपी के नाम से जानते हैं, वो बढ़ा दिया गया है। देखिए, कंपनी के एक ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि कच्चे सामान के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं, कच्चे माल के, और उसका असर आपकी कंपनी के अलग अलग उत्पाद हैं उनके ऊपर देखने को मिला है। खासतौर पर अगर मैं गाड़ियों की बात करूं जिनके दाम जो है वो बढ़े हैं, लेकिन अगर फिर भी जो अध्ययन किए गए हैं उस अध्ययन में ये है कि जीएसटी की कटौती जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू हुए थे उसके बाद दाम में जो कमी आई, अभी बढ़ोतरी तो हुई लेकिन वो कमी पूरी तरह से हम कहें कि खत्म हो गई है वो अभी उचित नहीं है, ये अध्ययन में सामने आया है, बहुत सारे आंकड़े भी सामने आए हैं। दूसरा आपने प्रश्न पूछा है व्हाइट गोल्ड का, मुझे लगता है कि आप प्लैटिनम का जिक्र कर रहे हैं जहां पर ये चर्चा होती है। और दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखिए कि अलग अलग गोल्ड की भी बात की जाती है, कहीं पिंक गोल्ड की बात की जाती है, ग्लो रेड गोल्ड की बात की जाती है। तो ये वो सोना है जो कि हम जिस गोल्ड मेटल की बात करते हैं, जिस सोना धातु की बात करते हैं, वो ये नहीं है, ये मिश्रित धातु है। और व्हाइट गोल्ड एक अलग तरीके का, आप जैसे प्लैटिनम का, जैसे मैं समझ पा रहा हूं आपकी बातों से कि वो उसके दाम अलग हैं, वो निश्चित तौर पर उसकी मांग काफी ज्यादा है, और बाकी जो आप अलग अलग सोना देखते हैं वो सोना जो है वो मिश्रित धातु है, ये ध्यान रखें।
1: Global crude oil prices.

0: prices eased over the last few trading sessions as markets grew hopeful of a phased truce between the US and Iran, with both sides reportedly in touch through mediators on the sidelines of the UN General Assembly meeting. Now, we read in the headline story about US rejecting Iran's seven-day proposal to reopen Strait of Hormuz. In such a scenario, Puneet, how should India be navigating the growing crude oil prices, especially if they continue to persist on a northern side?
1: So, Rajesh, clearly for India, the challenge is enormous, because not only do we have to contend with rising crude oil prices in the international market, we have limit, because we are the world's second largest importer of crude oil. So, clearly, we need very large supplies also. However, what geopolitical tensions are dictating to us, and particularly the latest trade tariff threat by the US on imports from Russia, I think India has really its task cut out, in a sense, because we need to import energy from Russia, because there is no other large supplier of energy like Russia, and therefore I think while we have we are looking at Brent crude about $100-$105, we really need to be cautious and going forward need to maintain supplies also to see that they are economic in nature.
2: शिशिर, इस संदर्भ में अगर देखें तो वैश्विक स्तर पर एक दबाव पड़ता है, चाहे वो सप्लाई चेन हो या और भी कोई अन्य आपूर्ति की जो चीज़ें हैं, जो हर देश को जिसकी ज़रूरत है, दबाव पड़ता है. ऐसे में किस तरह से हम आगे आने वाला भविष्य देख रहे हैं?
3: देखिए, दो बातें होती हैं. एक तो होता है कि आप विविधीकरण करते हैं कि आप चलो आप एक जगह से तेल ना लेकर के आप चार जगह से और तेल लेते हैं
2: जी.
3: और हमारे लिए ये भी समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए केवल ब्रेंट का प्राइस नहीं होता, हम जिसको कहते हैं इंडियन बास्केट का जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उसमें कई तरह के जो स्रोत हैं वो शामिल होते हैं. तो अभी की स्थिति में जो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि हम हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जो कुछ घटना चल रही है, जो वैकल्पिक व्यवस्था है, उसमें एक रूस का रास्ता थोड़ा सा हमारे लिए महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें टैरिफ ज़्यादा देना पड़े. हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि जब जयशंकर साहब की रवियो साहब से बातचीत हुई, उसमें उन्होंने ये मुद्दा उठाया और यूएस की ओर से, अमेरिका की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया कि राष्ट्रपति के पास वो विशेषाधिकार है कि किसी एक देश के प्रति यदि वो कुछ कमी या रियायत दे सकें. तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद इस बातचीत का सार्थक नतीजा निकलेगा और हमारे ऊपर उतना असर नहीं पड़ेगा जितनी हम आशंकित हैं.
2: नोएडा से हमारे साथ आकाश जुड़ रहे हैं. आकाश जी, कार्यक्रम में अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: हेलो मैम, नमस्ते. सर को भी नमस्ते. मैं आकाश नोएडा से बोल रहा हूँ. सर, मेरा सवाल ये है, जैसे मैं 29 एज है मेरी और शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है अभी, जैसे हमारी एफडी ब्रेक होने वाली है, मैच्योर होने वाली है, तो हम तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट, तो हम किस कौन हमें गाइड करेगा, कैसे मतलब हम कर सकते हैं, उसके लिए कौन बता पाएगा हमारे को अच्छी मतलब नॉलेज उसके लिए?
3: आकाश, मेरी एक सलाह है कि अगर आपको शेयर बाजार की जानकारी नहीं है तो शेयर बाजार ना जाएं. बाजार रातों रात आपको एक, जैसे कहते हैं ना, क्या एक आपको निवेशक नहीं बना सकता है. तो आपके लिए अभी बेहतर यह है कि अभी थोड़ा समय इंतज़ार करिए, पहले समझिए बाजार को. बहुत सारे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्रोत हैं, सेबी के कई सारे वर्कशॉप्स होते हैं, वहाँ पे आप समझ सकते हैं, उसके बाद ही आप निवेश करें. अभी के समय में मेरी सलाह है ना जाएं, बेहतर होगा.
2: नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR प्रारूप 15 अक्टूबर से लागू होगा. इसके अंतर्गत ₹2000 तक के UPI लेनदेन पर कोई MDR नहीं लगेगा. हालांकि कुछ विशेष श्रेणी के व्यापारियों के लिए प्रतिशत के बजाय एक समान यानी फ्लैट MDR लागू होगा.
0: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस दैट इंडिया कैन अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ओवर 10%, स्ट्रेसिंग ऑन द नीड फॉर अ ग्रेटर अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन.
2: बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी, पुनीत जी, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए
1: धन्यवाद.
0: थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, United States rejects Iran's seven-day proposal to reopen Strait of Hormuz. Indian stock markets remains under control of bears for seventh consecutive week, and Wall Street wraps up week with notable gains. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கிரண் சர்மா. निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
2: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR से जुड़े हर फैसले को पूरे आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
3: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने जारी संघर्षों के बीच संयम, तनाव कम करने और आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूर दराज के देशों को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए लगातार बने खतरों से वैश्विक समुदाय को मिलकर निपटना होगा। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि पश्चिम एशिया संकट का दो राष्ट्र समाधान स्थायी शांति ला सकता है। रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का प्रमुख विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान का भी उल्लेख किया। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने एशियाई खेलों में महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने जापान की टोमोका मियाजाकी को सीधे गेम में 21-9, 21-13 से हराया।

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே கிரண் சர்மா. निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों

0: को ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने जारी संघर्षों के बीच संयम, तनाव कम करने और आम नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूर दराज के देशों को भी इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए लगातार बने खतरों से वैश्विक समुदाय को मिलकर निपटना होगा। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि पश्चिम एशिया संकट का दो राष्ट्र समाधान स्थायी शांति ला सकता है। रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का प्रमुख विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान का भी उल्लेख किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की ओर से संघर्ष विराम के लिए दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग से जुड़े क्षेत्रीय समझौते की शर्तों को खारिज किया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने गुरुवार को कहा था कि ईरान ने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के लिए 7 दिन की योजना पेश की है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने एशियाई खेलों में महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने जापान की टोमोका मियाजाकी को सीधे गेम में 21-9, 21-13 से हराया। इससे पहले सिंधु ने दूसरे दौर में चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को 21-19, 21-14 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का

0: आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंद मई के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद से खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर जोर दिया। डॉ जयशंकर ने कहा कि आज वित्त, बाजार, आपूर्ति और तकनीक जैसे क्षेत्रों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में मदद की है और आपदा तथा संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता भी पहुंचाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि देशों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार AI मॉडल और उनके इस्तेमाल की योजनाएं विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल शेयर हिज थॉट्स विद द पीपल ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड इन हिज मंथली रेडियो प्रोग्राम मन की बात ऑन आकाशवाणी एट 11 AM टुडे। इट विल बी द 138th एपिसोड। The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on Air mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast.

0: இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम समूचे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO तथा सूचना प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
2: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया

0: है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में कल भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर जोर दिया। डॉ जयशंकर ने कहा कि आज वित्त, बाजार, आपूर्ति और तकनीक जैसे क्षेत्रों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि देशों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार AI मॉडल और उनके इस्तेमाल की योजनाएं विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ के साथ अपनी साझेदारी में AI को भी शामिल करेगा। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

அடுத்து பஜமானச பகுதாரி ராகம், ஆதிதாளம், துளசிவனம் பாடல்.

0: குங்குமங்கலம் நிகழ்ச்சி இதுவரை தக்கோலம் எம் முருகன் அவர்களின் நாகஸ்வரத்தை கேட்டீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் தொடர்பு செய்திருக்கீர்கள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார். विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का रुख स्पष्ट किया। महासभा के 81वें सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार रखता है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद पूरी दुनिया को शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई और आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद रोकने की जरूरत पर बल दिया। एआई के क्षेत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि देशों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार एआई मॉडल और उनके इस्तेमाल की योजनाएं विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। युद्ध और संघर्ष पर वैश्विक समुदाय से संयम, तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि युद्ध का असर केवल संघर्ष में शामिल देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूर दराज के देशों को भी इसका नुकसान होता है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देख

0: ते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। ये दिन लोगों को जोड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करता है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका को देखते हुए कल तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु में रेड अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा भी आज तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि अनुकूल मौसम होने पर यात्रा फिर शुरू की जाएगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र, उड़ीसा और तेलंगाना में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच शुरू होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की T20 श्रृंखला खेली जाएगी। एक दिवसीय टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल हैं। वहीं T20 श्रृंखला में श्रेयस अय्यर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, एनसी सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी भारत को आज पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the News On Air mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said that a meeting of the commission was held yesterday where Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on 24th of June last year for all the states and UTs starting with Bihar was issued with unanimous approval of the commission. The Election Commission has said that booth-level officers, BLOs, will visit the homes of individuals who have been issued notices during the ongoing Special Intensive Revision, SIR, to collect the required documents. The BLOs will subsequently upload the documents on the ECINET platform. The Commission clarified that such persons will not be called for hearing by Electoral Registration Officer. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that India would exercise its right to defend itself against terrorism, accusing an unnamed country of misrepresenting facts at the UN General Assembly a day earlier. Speaking at the United Nations General Assembly in New York, Dr. Jaishankar called state-sponsored terrorism with a cross-border purpose a direct challenge to the global order. He said, governments engaged in such practices must be held accountable and the financing of terrorism must be exposed and countered.
2: A persistent threat to peace has been the scourge of terrorism. That this could be state-sponsored with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable